0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य शा

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलेकैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
3: हर मनुष्य में असीमित आत्मबल होता है। इस बल या शक्ति का सदुपयोग वो करे तो न केवल स्वयं का अपितु दूसरों के जीवन को भी धन्य कर सकता है। हम ये भी जानते हैं कि हर आत्मा की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग स्वभाव है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति अलग है, जैसे हर कुंड का जल भिन्न होता है। हम ये भी जानते हैं कि एक गुरु लगभग एक सी शिक्षा अपने शिष्यों को देता है, लेकिन शिष्यों के सोचने और कार्य करने की विधि अलग अलग होती है। हम ये भी जानते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक विशाल संसार है, बहुत सी ऊर्जाएं हैं जिनमें लगातार प्रवाहित होने की प्रवृत्ति है। ऊर्जा प्रायः सृजन धर्मी होती है, पर जब सृजन का अवसर उपलब्ध नहीं होता है तो वो विध्वंस की ओर बहने लगती है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा का वेग बड़ा प्रबल होता है। वे कुछ ऐसा करना या रचना चाहते हैं जिसे सारा संसार जाने। इसी चेतना के कारण बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार हुए हैं, जिससे संसार सुविधा और साधन संपन्न हुआ है। मानव जीवन पूर्णता की चाह लिए हुए है। वो ईश्वर की बहुत विलक्षण कृति है। वो आनंद का सागर है। वो इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम रचना है। फिर भी कुछ लोग अपने को पतित मानते हैं, मैं खलकामी हूं ऐसा मानने लगते हैं। क्या ये भक्ति की दीनता है, या क्या हम अपने को पतित कहकर इस अनमोल जीवन का अपमान नहीं कर रहे हैं? ऐसा सोचकर क्या हम इस जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर पाएंगे? हम ये भी जानते हैं कि जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही बनते जाएंगे। इस प्रकार क्या हमने अपने भीतर स्थित उस शक्ति को विस्मृत कर दिया है जो जगत का निर्माण कर सकती है? वस्तुतः ये जीवन जगत से पलायन की वृत्ति है जो श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए हमें अपने सोचने के अंदाज को बदलना चाहिए। हमें जीवन में जो भी उपलब्धि है उसके प्रति धन्यवाद भाव रखते हुए ये सोचे, मैं अपनी आत्मशक्ति द्वारा सफल होकर ही रहूंगा। मैं दुनिया से रास्ता पूछने वाला नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक बनकर रहूंगा। इस प्रकार आप पाएंगे कि आपकी पूरी दिशा ही बदल चुकी है। आपके विचारों में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। नित नया सृजन दृष्टिगत होगा। दूसरों पर अपनी निर्भरता घटती जाएगी और आप में आत्मबल बढ़ता जाएगा। प्रायः हमारे सामने अपनी शक्ति को पहचानने में दो बड़ी बाधाएं हैं। पहला साहस की कमी और दूसरा भय। हम सोचते हैं कि जिस तरीके से दुनिया की भीड़ चल रही है वो सही ही होगा, भले ही उसके परिणाम गलत आ रहे हैं। अतः हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि लीक पर नहीं चलना चाहिए। लीक छाड़ी तीनों चल ही शायर सिंह सपूत। दूसरा भय है पाप पुण्य का द्वंद्व। हम ये भी जानते हैं कि डर यानी भय से बड़ा कोई नरक नहीं है। जीवन निज की यात्रा है। अतः हम अपनी आत्मा की आवाज को पहचाने और आत्मशक्ति से निर्णय लेकर आगे बढ़ें। हम जानते हैं कि जो पत्थर बिल्कुल दाग रहित होता है वही हीरा कहलाता है। जरा सा दाग जो नंगी आंखों से दिखता भी ना हो हीरे की कीमत को कम कर देता है। उसी प्रकार भय का लेशमात्र अंश भी आत्मशक्ति को निर्बल कर देता है। बहुत पुरुषार्थ और समय के बाद हम आत्मबल संपन्न होकर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अतः हम अपनी आत्मा को सच्चा हीरा बनाएं। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर निर्द्वंद्व होकर अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य असीम शक्तियों का पुंज है, उसे पराश्रयी ना होकर पराक्रमी बनना चाहिए। कहा गया है, कर बढ़िया बल आपनी छाड़ तिरानी आस, जाके आंगन है नदी सो कंस मरे प्यास।
4: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में लीजिए सबसे पहले सुनिए लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर के स्वर में ये पारंपरिक भजन। संगीत संयोजन है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संडली
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।

0: बाकी बिहारी, ये थे इस भक्ति गीत के बोल जिसे आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में। रचना रविंदर पटनिया की थी और संगीत संयोजन था जगजीत सिंह का।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: इस संदेश के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है खेती में एकीकृत पौध संरक्षण के उपाय, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं आरएन साहू, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी।
4: आज के कृषि चर्चा में खेती किसानी में कीड़ा मकोड़ा और बीमारी में रासायनिक दवा के इस्तेमाल के पहले क्या करना चाहिए, ये विषय में बात करबो। रासायनिक उर्वरक के उपयोग फसल कृषि के अनुसार वैज्ञानिक मन के अनुशंसा के आधार में संतुलित मात्रा में करना चाहिए। जैसे अनाज फसल में नाइट्रोजन 3 भाग, स्फुर 2 भाग, पोटास 1 भाग के अनुपात में करना चाहिए। दलहन फसल में नाइट्रोजन 1 भाग, स्फुर 2.5 भाग और पोटास 1 भाग देना चाहिए। इन्हें भी स्फुर और पोटास के पूरा मात्रा ला

0: बीज के बोने के समय या रोपाई के समय देना चाहिए। यूरिया ला थोड़े थोड़े मात्रा में फसल के उम्र के अनुसार 2 से 4 भाग करके देने अच्छा रहते। सूक्ष्म पोषक तत्व मन के भी उपयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। पौधा के स्वस्थ विकास पर और पूरा उत्पादन क्षमता ले पर नाइट्रोजन, स्फुर और पोटास के अलावा 13 सूक्ष्म पोषक तत्व की जरूरत होते, जैसे गंधक, चूना, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, लोहा, तांबा। ये तत्व मन के उपयोग अनुशंसा के आधार में फसल में करे ले कोई भी कीट और बीमारी लगे की संभावना कम हो जाते। खेत में मुख्य फसल के अलावा अन्य जो भी घास है उन्हें खेत से बाहर कर देना चाहिए। एकर से कीड़ा बीमारी के रोकथाम में मदद मिलती। काबर की घास मन में ही बहुत से कीड़ा बीमारी के फैलाव के कारण होते। प्रकाश प्रपंच के उपयोग खेत में शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच उपयोग करना चाहिए। इनमें बहुत से कीड़ा मन के कुछ रूप में नियंत्रण हो जाते और कीट की पहचान करने में मदद मिलती। कीट के हानि करे के पहले ही रोकथाम किया जा सकते। इनमें बल्ब के नीचे परात में मिट्टी तेल युक्त पानी ला रखना पड़ते, जिन्हें प्रकाश में कीड़ा मन आते और टकराए के बाद पानी में गिरे तो नष्ट हो जाते। कुछ जगह पीला चिपचिपा टेप के भी उपयोग हमन कर सकते हैं। इनमें चींटी, चाटा, माटा, मिलीबग के नियंत्रण करे में आसानी होते। इन्हें 1 किलो सड़ा गला केला में 10 मिलीलीटर मेलाथियन मिला करके पीला पुट्ठा में अच्छा से पोताई करना है, या पीला पुट्ठा में ग्रीस पोताई करके पौधा के ऊपर बगीचा में जगह जगह टांग देने भी कीड़ा मन के नियंत्रण हो जाते। पीटफॉल ट्रैप के भी उपयोग करना चाहिए। टमाटर, बैंगन, भिंडी फसल में प्रति एकड़ 6 से 7 जगह मिट्टी के मटका में 10 लीटर पानी में 100 ml मेलाथियन ला घोल करके बीच बीच में रख देते हैं। इनमें फली विधक कीट के भी अच्छा से नियंत्रण होते। BIT के भी उपयोग किसान मन ला रासायनिक दवा उपयोग करके पहले करना चाहिए। 1 किलोग्राम कुणा में 100 ग्राम गुड़ और 10 ml मेलाथियन मिला करके छोटे छोटे गोली बना के खड़े फसल में बीच बीच में रखना पड़ते, जैसे भिंडी, बैंगन, लौकी, मखना, तुरई के कतार के बीच बीच में रखे जा सकते। इनमें फल मक्खी और फल विधक के नियंत्रण हो जाते। ट्रैप क्रॉप के भी उपयोग करना चाहिए। ट्रैप क्रॉप में गोभी वर्गीय फसल की यदि खेती करा था तो गोभी फसल के चारों तरफ बाउंड्री में सरसों के 2 कतार लगाना चाहिए। इनमें पत्ता खाने वाला इल्ली के रोकथाम होते। टमाटर फसल के चारों तरफ गेंदा के 2-3 कतार लगाना चाहिए। सूर्यमुखी फसल के चारों तरफ मक्का के 2 कतार लगाने में हेड नोक्रोसिस वायरस के नियंत्रण होते। धान फसल में तना छेदक के रोकथाम पर ट्राइकोकार्ड के 3 से 4 कार्ड प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए। फल विधक कीट के रोकथाम पर बेसिलस थुरैजेंसिस बैक्टीरिया जैविक दवा के उपयोग करना चाहिए। 500 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में मिला करके शाम के समय फसल में स्प्रे करना चाहिए। फल विधक कीट पर NPV वायरस के उपयोग भी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। ब्यूरिया बेसियाना या मेटारेजियम हेनिसेप्ली को भी उपयोग फल विधक कीट के नियंत्रण पर किया जा सकता है। चूसक कीट के नियंत्रण पर वर्टिसिलियम लेकेनी दवा 400 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। इनमें कम खर्चे में स्थायी समाधान मिल सकते। 10 पर्णी दवा बना करके कीट नियंत्रण हेतु उपयोग करना चाहिए, जैसे नीम, करण, सीताफल, कनार, चंपा, आंख, निर्गुण के पत्ता ला सड़ा करके थान के पानी मिला के कीट के नियंत्रण पर उपयोग करना चाहिए। गोमूत्र एवं पुराना छाछ और मठा के उपयोग भी सभी प्रकार के कीड़ा मन के नियंत्रण पर किए जा सकते हैं। ये उपाय मन में यदि कीट के नियंत्रण नहीं हो पाते तो वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार में ही रासायनिक दवा के उपयोग करना चाहिए।
1: किसान भाई मन, का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता तो आज ही अपनावा हरी खाद, ढेंचा, सनई, लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते, जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ती, कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: माटी के सांस लौटा ही हरी खाद। अंधाधुंध रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना ला सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते। सस्ता, सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद, आज ही शुरुआत करो। हरी खाद पर बीज मा ढेंचा, सनई, मूंग जैसे बीज के उपयोग करो और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लखठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क कराओ।
5: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी के का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस का भाग 20। छह बजकर 50 मिनट का समय होगा कार्यक्रम देश गान का। नए बॉलीवुड गानों का कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का प्रसारण समय रहेगा 7:35 का। 7:45 पर सुनिएगा प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेष भेंटवार्ता। 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज सुबह 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, सुबह 9:35 से, सुबह 11:00 से, अपराह्न 12:00 से, शाम 5:00 तक व रात्रि 9:00 से 10:00 तक। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज सुबह 9:55 पर व 11:55 पर। पद्म पुरस्कार पर आधारित पॉडकास्ट का 30वां भाग हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज सुबह 9:10 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:10 पर। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी अमर गोट का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:00 का। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम का आनंद ले सकेंगे शाम 5:10 पर। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार का समय होगा 5:30 का जिसमें आपस की बात का विषय होगा नशे के बढ़ते प्रभाव और परिवार पर इसके दुष्परिणाम। शासकीय योजना के अंतर्गत सुनिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विषय पर जानकारी। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 व रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा शाम 7:20 का जिसमें आज की बात का विषय होगा सब्जियों में जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग में रखें प्रतीक्षा अवधि का ध्यान। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा भविष्य की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण। इसके साथ ही होगा आज का टिप कृषक प्रश्न मंच आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का समय होगा 8:20 पर। विविध संगीत रात्रि 10:00 और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सरयामिनी हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर हाजिर होंगे आज सुबह 7:55 पर, सुबह 10:00 और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 20। स्वर है वाणी जयराम का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने संज्ञा दी है। अत्यंत मनोहारी रूपों से रामकथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस रामचरित है, रामचरित गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा, श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है, जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है। चारों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 20 अभी आप सुन रहे थे। स्वर था वाणी जयराम का और संगीत संयोजन सतीश पाटिया का। इसके साथ ही मानस गान अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान।

0: समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:55 पर हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार व 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों के अनुप्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतरराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलि अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक अरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण भी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेशे खिदमत है नए बॉलीवुड गानों का प्रोग्राम फ्रेश बॉलीवुड, जिसमें आप सुनते हैं नए बॉलीवुड गाने। कार्यक्रम का पहला गाना लीजिए सुनिए, बॉबी ऋषि की लव स्टोरी फिल्म से रागिनी टंडन और आशीष छाबड़ा के युगल स्वर में। प्रोग्राम का नाम फ्रेश बॉलीवुड।

आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर सभी श्रोताओं को नीरज निर्मल कर बिलासपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आकाशवाणी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आजादी के पूर्व से ही स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में अपनी भूमिका का बखूबी से योगदान दिया है और आजादी के बाद से संगीत साहित्य और कला के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इसकी भूमिका सराहनीय रही है। आकाशवाणी से प्रसारित विविध कार्यक्रम न सिर्फ हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं बल्कि हमें हृदय से आनंदित भी करते हैं। आकाशवाणी से प्रसारित सदाबहार गीत भला कौन सुनना नहीं चाहती। मुझे भी सदाबहार गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ आकाशवाणी सदैव सूचना शिक्षा और मनोरंजन से युक्त कार्यक्रम प्रसारित करता रहे। अंतिम में सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: रेड टू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल के स्वर में गीत लिखा मनोज मुंतासिर ने और संगीत था रोचक कोहली का।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: मेट्रो इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। हृदय गट्टानी की आवाज में गीत लिखा रकीब आजम ने और संगीत था संतोष नारायण का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं नए गानों का प्रोग्राम फ्रेश बॉलीवुड। अगला गाना जल्दी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र

0: स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए मिशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंता भी रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए शक्तिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

सिकंदर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमित मिश्रा व साथियों के स्वर में। गीत लिखा समय ने और संगीत था जय मेहता और सलमान खान का। इसके साथ ही नए गानों का कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

झरोखा कार्यक्रम सुनैया सबो संगी संगवारी मित मितान किसान जवान लेकर सियान और ठिन्ना पहलवान जम्मो झनला चावल पटेल के राम राम जय जोहार। संगवारी आज के झरोखा में है लहसुन के गुण। अभी जाड़ के बखत बेला में एकर महत्व बढ़ जाते। इला नियमित भोजन में शामिल करे ले गठिया कफ दांत दर्द कब्जियत ये सबो में बढ़िया लाभ मिलते। खून में खराबी कोलेस्ट्रॉल ला कम करते। खून साफ करे में मदद करते। एकर नियमित सेवन करे ले हृदय हर हमेशा स्वस्थ रहते तंदुरुस्त रहते। संगे वो कैंसर और दूसर गंभीर बीमारी ला घलोक हमला बचाते। मधुमेह के रोगी पर बहुत ही लाभकारी है। भैया हो लहसुन में टी सेल्स फैगोसाइट्स लिम्फोसाइट जैसन तत्व मौजूद है जोन हर इम्यूनिटी ला बढ़ाते। एमा विटामिन ए B1 B2 और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते जोन हर त्वचा पर बहुत ही बढ़िया होते। एमा एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल

द्वारा बनाए रोग थे, एकर ले कैंसर के आशंका घटते संगी हो। इमा मौजूद एलाइसिन तत्व हर पेट संबंधी बीमारी में राहत देते। इमा पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा और फाइबर के मात्रा घलोक होते। एकर सेवन सब्जी, दाल, अचार, चटनी के रूप में हम कर सकत हन। कंचा छील के बिहाने 5 कली चबा चबा के सेवन करके ऊपर ले दी हम पानी पियत हन, तब बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक के संगी हो। तो संगवारी हो, लहसुन के सेवन करा और हाई ब्लड प्रेशर ले घलोक बाँचे रहा। आप मन जरूर इस्तेमाल करा, स्वस्थ रहा, बढ़िया रहा, ठिन्ना रहा, मस्त रहा, तन मन ला राखा पर छर और गुनगुनावा ताली ये गुरतुरा गीत।

अब गीत के बाद देवा विदा अपन रेडियो संगवारी ला झरोखा कार्यक्रम सुनिया सबो संगी संगवारी मित मितान लैका सियांग जम्मू झमला चावल पटेल के राम राम जय जोहार।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: इस संदेश के साथ ही प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रसूति उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर भारती पटेल और भेंट करता है प्रियंका श्रीवास्तव।

0: श्रोताओं, महिलाओं में टीनेज से लेकर कई बड़े बड़े होते तक कई गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, खासकर जब वे गर्भावस्था में होती हैं तो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के कारण कई प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। उनमें से एक रोग है प्रसूति फिस्टुला। पर ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर भारती पटेल जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पहले तो भारती जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद प्रियंका जी।
0: भारती जी, हमें ये बताइए कि महिलाओं में कौन कौन सी गायनिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं?
1: वैसे तो महिलाओं में बहुत सारी गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो हर दिन किसी न किसी तरह से फेस करती हैं। सबसे कॉमन चीज है मेंसेस। हर महिला को महावारी आती है, कभी वो अनियमित होता है, कभी उसमें दर्द होता है, कभी फ्लू ज्यादा या कम है, और इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में मेंटल स्ट्रेस के साथ तो हमेशा एनीमिया कनेक्टेड रहता ही है। अगर जो फीमेल अपने पोषण पे ध्यान नहीं देगी, उसका कभी भी ब्लड टेंग्राम के ऊपर नहीं पाया जाता। दूसरी चीज है प्रसूति और गर्भावस्था, जो कि किसी भी फीमेल के लिए बहुत कॉमन है। हर फीमेल उस दौर से गुजरती है, लेकिन इसके साथ ही उसमें तो वो तकलीफ पाएगी ही जब तक वो प्रेग्नेंट है। मूड डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन चीज है जो किसी को समझ में भी नहीं आता है। उसके बाद आती है बारी प्रसूति की। प्रसूति अपने आप में सबसे पेनफुल कंडीशन है, लेकिन उसके बाद जब बेबी होता है तो उसके फीडिंग के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, जन्म देने के बाद के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, जिसके लिए आज हम बैठे हैं, जो कि है प्रसूति फिशुला, उसके साथ ही और अनेक प्रॉब्लम्स होती हैं। खास करके जब एक बच्चा आता है, सारे परिवार के लोग एकदम खुश हो जाते हैं और सारा ध्यान बच्चे पे फोकस हो जाएगा, और कभी भी वो ये नहीं समझ पाते कि फीमेल किस किस दौर से गुजर रही है। इसके अलावा मेनोपॉज, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स ओके, मेनोपॉज आ गया, पीरियड्स खत्म हो गया, अब आपका प्रॉब्लम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। मेनोपॉज के 5 साल पहले तक, मेनोपॉज के समय और मेनोपॉज के बाद पूरा जब तक आप जी रहे हैं, तब तक आपको अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि मेनोपॉज आने के बाद हार्मोनल रेगुलेशन खत्म हो जाता है। कई बार बीमारी के रूप में हार्मोनल इम्बैलेंस हर फीमेल फेस करती है, लेकिन मेनोपॉज के बाद तो उसका हार्मोन का जो चक्र होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने और कम होने का, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम की तरह दिखता है।
0: मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी हुई, गर्भावस्था से जुड़ी हुई, मेनोपॉज से जुड़ी हुई है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो महिलाएं फेस करती हैं। इसमें मैम आपने एक नाम दिया है प्रसूति फिस्टुला, आखिर वो है क्या?
1: ऐसे तो फिशुला का शाब्दिक अर्थ ये है कि कोई भी ऐसा रास्ता जो दो चीजों के बीच में नहीं होना चाहिए और वो हो जाता है। मेडिकली एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दो एपिथेलियल लेयर्स के बीच में। जनरली अभी हम बात कर रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड, वो भी गायनिक पार्ट से, तो उसमें मेनली ये पेशाब की नली, पेशाब की थैली और मूत्र से, जिससे मूत्र विसर्जन होता है, वो नली, इनका बच्चादानी और वेजाइना के साथ जो कनेक्शन होता है उसको फिशुला कहते हैं। इसके अलावा ये रेक्टम से भी कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन डिलीवरी के समय रेक्टम ज्यादा सेफ जगह पे होता है, और मूत्राशय और मूत्र नली ये ज्यादा फेस करती है प्रॉब्लम, क्योंकि डिलीवरी के समय बच्चे के सर और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच ये दब जाती है, जिसकी वजह से इसमें नेक्रोसिस होके स्लफिंग, इन्फेक्शन ये सब हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फिशुला फॉर्मेशन हो जाता है।
0: जी, तो जैसे आपने बताया कि फिशुला फॉर्मेशन हो गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
1: कई बार ऐसा होता है कि हम, ये डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, यहाँ पे हर किसी के पास इजी अप्रोच नहीं है बेटर प्लेस के लिए, डिलीवरी के लिए। मोस्टली प्रसूति फिशुला डिलीवरी के ही कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में आता है। अगर हम पहले से असेसमेंट नहीं किए हैं, एएनसी चेकअप रेगुलर नहीं है, उसके बाद किसी भी माइनर मिस्टेक की वजह से, या अभी भी दाइयों के साथ जो डिलीवरी हो रही है, या घर में जो डिलीवरी हो रही है, या अनअवेयर जो लोग हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जिनका असेसमेंट ठीक नहीं है, डिलीवरी के समय कई बार हड्डी और पेल्विक गर्डल का जो साइज होता है वो मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से नियर मिस डिलीवरी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी, ये सब होता है छोटी जगहों पे। और जब तक वो किसी बड़ी जगह पे पहुंचते हैं, तब तक वो दबाव की वजह से इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, स्लफिंग, ये सब बाद में उनको कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म पे आता है। तो कुल मिला के ये है कि हमको डिलीवरी के समय इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि
0: ना डेवलप हो पाए। तो इसके रोकथाम और उपचार क्या हो सकते हैं?
1: रोकथाम के लिए हमेशा अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको रेगुलर एएनसी चेकअप के लिए जाना चाहिए सही जगह पर। एएनसी चेकअप के समय पे जब डिलीवरी के लिए वो तैयार होती है, टाइम आता है, उस समय असेसमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा लग रहा है, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो कि ये नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसमें बेटर है कि हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ चले जाएं। और उपचार के लिए बहुत सारे उपचार हैं। अगर फिशुला का साइज छोटा है तो वो कई बार हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करके थोड़े लंबे समय के लिए 1 वीक टू 2 वीक हम ये कर सकते हैं कि वो अपने आप क्लोज हो जाएगा अगर टाइम पे है तो। अगर मान लीजिए परमानेंट फिशुला फॉर्मेशन हो गया है, उसका इनर लेयर में एपिथेलाइजेशन हो गया है, तो फिर उसका सर्जरी एकमात्र तरीका है। अगर उसमें भी वो 4 सेंटीमीटर के अंदर है तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर से ऊपर है तो सक्सेस के चांसेस थोड़े से प्लस माइनस चलेंगे।
0: मतलब ये कह सकते हैं कि प्रसूति फिस्टुला का जो अगर पहले पता चल गया तो अपन लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो सर्जरी होती है।
1: जी
0: जी, तो प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है?
1: ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है।
0: तो इसके मनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है?
1: एक अवेयरनेस जागृत करना है लोगों में। अभी भी फिशुला एक ऐसा चीज है जो तुरंत डिलीवरी के समय नहीं दिखता, कई बार इसको 2-3 दिन लग जाता है होने में, डेवलप होने में या पता चलने में, कई बार ये थोड़ा और लंबा समय लेता है। और ये ऐसी चीज है कि अगर किसी के वेजाइना से लगातार यूरिन लीकेज हो रहा है, भले वो माइन्यूट अमाउंट में है कि ज्यादा अमाउंट में है, वो लड़की थोड़ा झिझकेगी, खुद को उसको समझने में तकलीफ होगा कि ये फिशुला है। उसके बाद मेडिकल हेल्प के लिए वो किसी को घर के बोलेगी तो वो ले जाके उसको मेडिकल हेल्प दिलाएगा। छोटी जगहों में CSC PSC में कई बार ये पॉसिबल भी नहीं है कि वहां पे इसका डायग्नोसिस हो सके। तो इस दिन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि सभी को अवेयरनेस हो, लोग इसको बिना झिझक के, बिना शर्मिंदगी उठाए आराम से मेडिकल हेल्प के लिए जा सके और इससे निजात

0: पाए।
1: तो जैसे कि आपने ये बताया कि ये प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो जैसे विशेष दिवसों की जो रहती है थीम रहती है, तो इस वर्ष इस डे की थीम क्या है?
0: इस डे की थीम अभी भी हर हेल्थ एंड हर राइट्स के रूप में है। हर फीमेल को अपना हेल्थ बेस्ट वे में पाने का अधिकार है।
1: मतलब ये कहना चाहिए कि जो भी महिलाएं हैं उनको अपने हेल्थ के लिए अवेयर होके, चाहे ये प्रसूति फिस्टुला वाली ही बात क्यों ना हो, जरूर डिस्कस करके तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जी, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हर फीमेल कुछ चीजों को बोलने में झिझकती है। एक सिंपल सी बात है, जब हमको हर महीने मेंसेस आ रहे हैं और हम पैड लेने जा रहे हैं, तो अभी भी पैड वो पन्नी में रैप करके आराम से ऐसे किनारे से दे देते हैं, तो जब वो रेगुलर चीज के लिए आज इतना है कि कोई
1: सीधे
0: की बात
1: नहीं
0: कर पा रहा है, तो इसके लिए भी हमको लोगों को जागरूक बनाना होगा, सिंपैथी क्रिएट करानी होगी, ताकि कोई भी उसको घृणा और तिरस्कार की नजर से देखने की बजाय उस फीमेल को बोल्ड हो करके अपने घर वालों को भी बताना है और जाके डॉक्टर से हेल्प भी लेनी है।
1: कहना चाहिए कि इसमें हेजिटेट ना करते हुए तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और घर वालों को जरूर बताएं
0: और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए।
1: जी, तो भारती जी आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेष भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर भारती पटेल और भेंट करता थी प्रियंका श्रीवास्तव।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: इसके साथ ही विशेष भेंटवार्ता का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। अब से कुछ पलों बाद यानी 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वह इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 का समय होगा कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:35 से, सुबह 11:00 से, अपराह 12:00 से, शाम 5:00 तक व रात्रि 9:00 से 10:00 तक। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 9:55 पर व 11:55 पर। पद्म पुरस्कार पर आधारित पॉडकास्ट का 30वां भाग का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:10 पर। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा हमारे केंद्र से आज सुबह 10:10 पर। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी अमर गोठ का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:00 का। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम सुनिएगा शाम 5:10 पर। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:30 पर, जिसमें आपस की बात का विषय होगा नशे के बढ़ते प्रभाव और परिवार पर इसके दुष्परिणाम। इसके साथ ही शासकीय योजना के अंतर्गत सुनिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विषय पर जानकारी। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 व रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम किसान वाड़ी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा सब्जियों में जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग में रखें प्रतीक्षा अवधि का ध्यान। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनेगा भविष्य की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव व आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध संगीत सुनिएगा रात्रि 10:00 और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सरयामिनी हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे आज सुबह 10 बजे और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। फिलहाल कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। 8 बजे समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के अनुप्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: हाँ

0: माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: घर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
4: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
5: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारे जांची पर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो

0: मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
2: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
3: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोर मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहतसे, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Awards 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
5: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Department of Higher Education among others. With Dipendra Kumar, Rishi Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
6: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said, during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said, later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. Ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor of a Cyprus counterpart, Nikos Christodoulidis, and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
7: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारी जानची पर की मित्रता आपसे सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
6: President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, also highlighted the friendship with India.
8: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
6: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
9: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gawani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
6: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
4: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000 meter plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
10: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी. इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक-एक करके हो गई बात. मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी.
6: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 9:10 a.m. You can also listen to this conversation on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Petrol and diesel prices were increased by up to 91 paise per litre today, marking the third hike in less than 10 days. In Delhi, petrol price has been increased by 87 paise to 99.51 rupees per litre, while diesel has gone up by 91 paise to 92.49 rupees per litre. This is the third revision in fuel rates in recent days. The increase comes amid a sharp surge in global crude oil prices following the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. The ministry further stated that responsible consumption and public cooperation will help ensure smooth fuel availability for all during the ongoing high demand period. The Madhya Pradesh government has taken an important step towards Uniform Civil Code UCC. Chief Minister Mohan Yadav launched the website ucc.mp.gov.in at the Secretariat yesterday. Through this portal, citizens, political parties and social organizations can share their views and suggestions on the proposed UCC. The last date for submitting feedback is 15th of June this year. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Meanwhile, Madhya Pradesh continues to reel under intense heat wave conditions. We have a report from our correspondent.
11: The Met Department has issued heat wave warnings in 42 districts today. Tikamgarh, Chhatarpur and Panna are the worst affected. All three are under red alert. Gwalior and 20 other districts are under orange alert for severe heat wave. Bhopal, Indore and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday the temperature crossed 44 degrees Celsius in 10 cities. Mogam in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begin yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.

0: डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कई बार हमें कानों से संबंधित अलग अलग तरह की समस्या का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख समस्या है सुनाई नहीं देना। तो ये समस्या क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसका उपचार हम किस तरह से करवा सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रूपा मेहता को। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मेहता, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम सुनाई नहीं देने की समस्या की बात करें, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं?
1: देखिए, सुनाई नहीं देना बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है और इसकी विशेषता ये है कि ये हर एज ग्रुप में होता है। बच्चे, मीडियम मतलब मिडिल एजेड और बूढ़े, सभी एज ग्रुप को ग्रसित करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके रिलेटेड ये है कि ये बहुत टाइम तक इग्नोर किया जाता है, स्पेशली इंडियन सेटअप में बहुत टाइम तक, जब तक ये ज़्यादा तकलीफ नहीं देता इसको इग्नोर किया जाता है। तो इसलिए इसके कारण जो है, एज वाइज यदि हम बात करें तो जैसे जन्मजात शिशु है उसमें भी कई मतलब कंजनेटल रीजंस के चलते, जेनेटिक रीजंस के चलते सुनाई कम देना होता है, मतलब सुनाई कम होता है। फिर जैसे जैसे बचपन की बात करें, मतलब न्यूनेट हो गया जन्मजात शिशु में कॉन्जेनेटल कॉज, फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों को, तो इन्फेक्शन के चलते सुनाई कम हो जाता है, जिसमें कान से पीक भी बहती है और सुनाई भी कम होता है। फिर जैसे यंग एज या मिडिल एजेड में बात करें तो तेज़ आवाज़ या काम के चलते, वो तेज़ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में है, तो तेज़ आवाज़ से जो ध्वनि, तेज़ ध्वनि के कारण उनका नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस कॉमनली है इस एज ग्रुप में। फिर एल्डरली में बात करें, यानी एजेड लोग हैं, उनमें बात करें तो नस की कमजोरी है। तो ये मोस्ट मतलब कॉमन एज वाइज

0: है अलग अलग, बट इनमें ओवरलैप भी होता है, जैसे ईयर इन्फेक्शन मिडिल एजेड में मिल जाएगा, एल्डरली में मिल जाएगा, तो ऐसे मल्टीपल कारण हैं। और जो सुनाई कम देना है वो दो मेन कंडीशन के चलते होता है, एक होता है नस की कमजोरी और एक होता है इन्फेक्शन के चलते आपका जो कंडक्टिव मैकेनिज्म है, जो आपकी नस तक आवाज़ पहुंचने के बीच में जो माध्यम है उसमें तकलीफ आने से। तो ये दो मेन कारण हैं और एज वाइज अलग अलग कारण होते हैं।
1: डॉक्टर मेहता, अगर किसी शिशु को ये समस्या है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका पता माता पिता को कब और कैसे चलता है?
0: ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जितना जल्दी हम पता लगाएं कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, उतना जल्दी उसका हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, और जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी उसका और उतना अच्छा उसका प्रोग्नोसिस और रहेगा, हियरिंग रिहैब रहेगा। तो देखिए, बच्चा जैसे से 3 महीने का 4 महीने का तेज आवाज़ से वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आवाज़ तेज़ हुई तो भी वो टर्न करता है अपनी गर्दन, वो नहीं कर रहा है, मदर फादर की आवाज़ को नहीं समझ रहा है, फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है तो क्यूज़ मतलब आवाज़ देंगे तो नहीं सुनेगा, तो ये सब अगर ऐसा हो रहा है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। नहीं तो सब लोग मतलब जनरल पॉपुलेशन या परिवार वाले बोलते ठीक है बड़ा होगा तो सुन लेगा, थोड़ा अभी छोटा है ऐसे करके, या फिर बड़ा भी हो गया 1.5-2 साल का 1.5 साल का बोल नहीं पा रहा है, तो बोल नहीं पा रहा है तो कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चा मेरा बच्चा 3 साल में बोला था, उसका बच्चा 5 साल में बोला था, तो वेट करते हैं। तो यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है पहली चीज़, और या फिर छोटा बच्चा भी आवाज़ से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसकी सुनाई में तकलीफ है, तो उसको जितना जल्दी हो सके अस्पताल में लाके एक बार हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए। तो उससे जल्दी पकड़ में आता है बच्चों के हियरिंग लॉस, और जल्दी फिर हम हियरिंग एड लगा के या उसकी जाँच करके समझते हैं कि क्या रीज़न है, और फिर आगे उसका इलाज होता है।
1: डॉक्टर मेहता, आपने इन दोनों को ही आपस में एक संबंध बताया है कि अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि वो सुन ही नहीं पा रहा है तो शब्द बोलेगा कैसे।
0: बिल्कुल।
1: क्या ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन उसे सुनाई दे रहा है?
0: हाँ, ऐसा भी होता है पर वो रेयर है। नॉर्मली अच्छा बच्चा जब सुनाई की है प्रॉब्लम है तो बोल नहीं पाता है, बट बोलना केवल सुनाई अच्छा होना और बोल नहीं पाना ये भी होता है, ये टंग की कोई प्रॉब्लम या अंदर मतलब वॉइस बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम रहा तो ऐसा भी होता है, बट वो थोड़ा रेयर है। और ये जागरूकता लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि बोल नहीं पा रहा है तो सुनाई का टेस्ट करा लो, अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम दूसरे डायरेक्शन में उसका इलाज करेंगे, बट सुनाई जितना जल्दी हम पकड़ेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन बहुत प्लास्टिक होता है, अगर उसको हियरिंग का उसको नहीं मिला स्टिमुलेशन तो जो हिस्सा हियरिंग के लिए होता है वो फिर धीरे धीरे डिम होता रहता है क्योंकि उसको स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, और उस दूसरी वो दूसरी मतलब क्रियाओं में काम आने लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी सुनाई जब कम हो रही है तो पकड़ें उसका मतलब उसका निदान उसका मतलब उसको हम डायग्नोस करें और फिर उसको निदान की तरफ ले जाएं।
1: जब हम शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों की बात करते हैं तो उनमें हमारी जीवा और हमारे कान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे तंत्र होते हैं कि कान से हम दुनिया की कोई भी आवाज़ सुनते हैं और जुबान से हम कोई भी बात बोल सकते हैं। क्या आज की तारीख में मेडिकल साइंस की तरक्की में अब ये भी संभव हुआ है कि जब गर्भस्थ शिशु की जांच की जाती है तो उन जांचों में उसके शरीर के सारे ही अंग सामान्य हैं इस बात की भी जाँच की जाती है, तो ऐसे में क्या उसके सुनाई देने या बोलने की स्थिति कैसी होगी, इसकी भी कोई जांच संभव है?
0: देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है ओई स्क्रीनिंग, एक यूनिवर्सल नियोनेटल स्क्रीनिंग बोलते हैं, हियरिंग स्क्रीनिंग, वो कराना चाहिए। अभी जैसे एम्स में होता है और फिर मतलब सारे हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है विद इन 2 डेज 3 डेज वो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ओई बोलते हैं, कान के अंदर डाल के वो देखते हैं, तो उससे स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। यदि उसमें पास है तो मतलब हियरिंग ठीक है, यदि हियरिंग ठीक नहीं होता तो उसमें फेल रिजल्ट आता है, तो फिर उसका हम वापस रिपीट करते हैं 1-1.5 महीने बाद, और नहीं तो फिर बैरा के लिए उसको मतलब रिकमेंड करते हैं, बैरा टेस्ट एक होता है तो उसके और उसके बेसिस पे फिर उसकी जांच होती है। और जैसे कि मतलब गर्भस्थ में आइडेंटिफाई करना, तो एक्चुअली कोई सिंड्रोमिक यदि है तो वो सिंड्रोम में हियरिंग लॉस एक कॉम्पोनेंट होता है, बट जांच जो है वो जांच पैदा होने के 2-3 दिन के भीतर ही हो जाती है, और हर किसी को कराना चाहिए। यदि वो 2-3 दिन के भीतर नहीं हो पाई, जैसे अस्पताल घर में डिलीवरी हुई, तो जब आप टीके के लिए जा रहे हैं, टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, तो कराइए। बट हर शिशु की जांच, सुनाई की जो ओई स्क्रीनिंग, उसमें कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब बिल्कुल कुछ मिनट ही लगते हैं और बहुत ईजी टेस्ट है, तो वो जरूर कराना चाहिए हर शिशु को।
1: डॉक्टर मेहता, आपने बताया कि हर शिशु को इस तरह की सुनाई देने वाली जाँच करवा लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए माता पिता जन्म होने के बाद कुछ माह तक भी इस तरह की जांच नहीं करवाते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि बच्चे को सुनाई देने में कोई समस्या है, तो क्या ये लेट होने की वजह से या विलंब होने की वजह से कोई बात बिगड़ जाती है?
0: देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेन हमारा प्लास्टिक होता है, तो इसलिए जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे ना, उतना हम हियरिंग एड लगाते हैं, हियरिंग एड से स्टिमुलेशन मिलता रहता है उस पार्ट को, जितना भी जा रहा है बट स्टिमुलेशन मिलता है, पार्ट एक्टिव रहता है। तो ये चीज़ है, और अभी हमारा यही एम है कि हम जितना जल्दी, मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम डायग्नोस कर लें, 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रिहैबिलिटेशन हियरिंग एड या लगा लें, और यदि हियरिंग एड से भी नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कॉकलियर इम्प्लांट होता है, तो वो फिर जितना जल्दी हो सके 1-1.5 साल 2 साल में हम लगाएं, तो उससे बच्चे का इंप्रूवमेंट, जो स्कूल गोइंग एज में बच्चा मतलब अगर सुनने लग जाएगा तो बोलेगा अच्छे से, उसका बौद्धिक विकास उतना अच्छा होगा। तो एम ही रहना चाहिए कि भाई स्कूल 3 साल में जाता है तब तक उसका रिहैबिलिटेशन, मतलब हियरिंग इन प्लेस हो, ताकि वो सब बच्चों के साथ, मतलब सब बच्चों के बराबर उसका बौद्धिक विकास भी हो सके, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें सुनाई देने पे निर्भर होता है। वो सुनेगा तभी समझेगा और बोलेगा, और मतलब हर चीज़ आप पढ़ाई से लेकर हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट रहती है। तो इसलिए जितना जल्दी, हमारा एम ये रहता है जितना जल्दी हम पकड़ेंगे सुनाई, मतलब कम बात सुनाई के बाधित बच्चों को, उतना जल्दी उनका उतना हर तरह से सर्वांगीण विकास होगा।
1: डॉक्टर मेहता, अगर हम नवजात शिशु के साथ की जाने वाली क्रियाओं की बात करें, जैसे कि बच्चे की मालिश की जाती है, और उसके अलावा पहले तो ऐसा भी होता था कि बच्चे के कान में तेल डाला जाता था, तो इस तरह की चीज़ें भी की जाती थी, तो आप बताएंगे कि नवजात शिशु के साथ वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसका दुष्प्रभाव उसके कानों पर पड़ सकता है?
0: देखिए, एक तो ये है कि कान में तेल डालना मतलब एडवाइजेबल नहीं है, नहीं करना चाहिए, बट उससे मतलब अगर आपका कान का पर्दा ठीक है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट सुनाई पे ऐसा कुछ नहीं होता है। कान की क्लीनिंग खुद नहीं करना चाहिए, पीरियोडिक चेकअप्स कराएं, अगर कान में खुजली हो रही है, कान में पीक आ रही है तो उसको लाइटली ले लेते हैं, कोई भी ड्रॉप्स ले लेते हैं, हम दुकान से डाल लिया ठीक हो गया, तो ऐसा ये नहीं करना है। आपका अगर कान में पीक आ रही है, दिखाना है कान में छेद हुआ है पर्दे में तभी आ रही है, उसमें भी दो तरह के होते हैं, हड्डी गलने वाली बीमारी एक होती है, एक नॉर्मल छेद होता है, तो यदि ऐसा है तो वो सब चीज़ें आप ENT के पास जाके ही चीज़ करा सकते हो, जितना जल्दी चीज़ें पकड़ में आएंगी उतना जल्दी उसका इलाज होगा। तो इसलिए मतलब इग्नोर नहीं करना है मेनली, ये ना हियरिंग लॉस को और ना कान से पीक या कान के कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, एक जुकाम बहुत होता है बच्चे को, छींके बहुत आती है, या फिर नाक बंद बहुत रहता है, नाक के पीछे एक ग्रंथि होती है, इसको एडिनॉइड बोलते हैं, तो वो भी यदि बाधित रहा तो फिर उसमें भी सुनाई लॉस होने का रहता है। तो यदि बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो ऐसे कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ENT चेकअप कराना और दिखाने में कोई नुकसान नहीं है, जल्दी चीज़ें पकड़ में जाएंगी और जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा।
1: डॉक्टर मेहता, अगर हम शरीर के छिद्र वाले अंगों की सफाई की बात करें, तो नवजात शिशु के कान की सफाई किस तरह से करनी चाहिए?
0: देखिए, अपने आप सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, बच्चों में या बड़ों में किसी में भी वैक्स जो बनता है उसका एक फंक्शन होता है बॉडी में, और वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, अपने आप मीडियल से लैटरल करके बाहर आता है वो और अपने आप निकलता है, अनटिल अनलेस हम ईयरबड्स डाल के उसको अंदर डालते, क्योंकि नैरो होता है, किसी में नैरो किसी में वाइड, जिसमें छिद्र छोटा है नैरो है उसमें मुश्किल होती है कई बार, बट अदरवाइज सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, हम लोग खुद ही ईयरबड डाल के या उसको बाधित कर रहे हैं, क्लीन करते हैं तो ट्रॉमा हो जाता है, उससे फंगस बन जाता है, तो ईयरबड्स का उपयोग ना करें। ईयर ड्रॉप्स आते हैं वैक्स डिजॉल्विंग, और आप ऐसे मतलब थोड़ा सा छिद्र को वाइड करके देख सकते हैं वैक्स है, तो वो वैक्स डिजॉल्विंग ड्रॉप्स डाल दें बीच में कभी कभी, इंटरमिटेंट यूसेज, तो उससे सॉफ्ट होकर वो इजीली अपने आप निकल जाता है। और यदि ये लग रहा है कि नहीं निकल रहा है और दिख रहा है कि वैक्स मैल है, तो बेटर है कि डॉक्टर के पास जाके निकाला जाए, तो उससे ट्रॉमा होने के, जो कैनाल में ट्रॉमा होता है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ट्रॉमा होता है या वो वापस अंदर फंसने की जो रहता है, वो सब चीज़ें नहीं होती है।
1: डॉक्टर मेहता, ये तो हो गए वो कारण जिसकी वजह से कान में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। अब अगर हम इसके उपचार की बात करें, अभिभावकों को ये पता चलता है कि उनका बच्चा बोल नहीं पा रहा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उसको सुनाई नहीं देता, तो इसका जो उपचार है वो किस किस तरह से संभव है?
0: देखिए, छोटे बच्चे की जैसे हम बात करें कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो पहले जैसे मैंने बताया OAE करते हैं, फिर बैरा करते हैं, यदि उसमें सुनाई समझ आता है कि नस की कमजोरी है और सीवियर कैटेगरी में आ रहा है बच्चा, तो मॉडरेट टू सीवियर, तो हम हियरिंग एड पहले लगाते हैं। बच्चे को हियरिंग एड रेगुलरली लगाना है, जब वो मतलब नहा लेता है सुबह, नहाने के बाद लगा दीजिए, सोने के टाइम निकालिए, और उससे देखते हैं 3 महीने 6 महीने वो यूज़ करता है कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। कुछ बच्चों में, कुछ प्रतिशत बच्चों में हियरिंग एड से अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो हम एडेड ऑडियोग्राम करके बोलते हैं, सुनाई की जांच हियरिंग एड के साथ, तो उसमें यदि अच्छा वो सुन पा रहा है चीज़ें, तो हम हियरिंग एड उसका ये एडवाइजेबल होता है। यदि उससे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, 6 महीने यूज़ किया देखा नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम कॉकलियर इम्प्लांट एक डिवाइस होती है जो इनर ईयर में, कॉकलिया में, जो हमारी सेंसरी हियरिंग ऑर्गन है जो हड्डी के अंदर होता है, तो उसमें डालते हैं और वो डायरेक्ट फिर नर्व्स को

0: इम्पल्सिस देता है और सुनाई के लिए इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो हम तभी करते हैं जब 6 महीने उसने हियरिंग एड यूज़ किया है, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम CT MRI करा के फिर देख के उसको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए लेते हैं। तो ये मेनली प्रक्रिया है इसके निदान की। ये तो हो गया जब जन्मजात, मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुनाई कम है, नस की कमजोरी है। एक होता है जैसे कान में इन्फेक्शन हुआ, पस आ रहा है बार बार, कान में भारीपन रहता है, तो उसका उसका भी हम मेनली मतलब पहले जांच करके पस निकालते हैं, उसको सूखा होता है कान, दवाई देके, और उसके बाद फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करके उसकी सुनाई बेहतर की जा सकती है।
1: डॉक्टर की सलाह के आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर रूपा मेहता जी हमारे साथ हैं और आप कान से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर मेहता, इस विषय पर हम आगे और आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मन कर रहा है कि इस बातचीत को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर ले चलें और आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर की सलाह के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपा मेहता। आप कान से संबंधित समस्या और समाधान के बारे में हमें बता रही हैं। डॉक्टर मेहता, इस गीत से पहले आपने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट करने से बच्चे को सुनाई देने लगता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या पूरे जीवन में सिर्फ एक बार करनी होती है?
1: हाँ जी, उसको मतलब जैसे बच्चों में करते हैं तो उसका लाइफ 20-25 साल होता है, फिर उसके अपग्रेडेड आते हैं तो वो हम ऊपर मतलब एक सर्जरी करके चेंज करना पड़ता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी जो AVTA करके थेरेपी होती है, केवल इम्प्लांट लगाने से बच्चा मतलब एकदम नॉर्मल बोलने लग जाएगा ऐसा अगले ही दिन, ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांट की सेटिंग्स करनी होती है जो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं, उसकी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होती है, वो होती है। तो वो लगभग ऑपरेशन के 1.5-2 साल बाद तक रेगुलर कराते हैं, घर में स्टिमुलेशन देते हैं, तब जाके बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी और नॉर्मल सुन और बोल पाता है।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम किसी ना बोलने वाले बच्चे के उपचार के लिए अभी तक आपने जो प्रयास बताए हैं उन प्रयासों से बच्चा बोलने लगता है ये आपने बताया, क्या ऐसे भी कुछ मामले होते हैं कि जिसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये संभव नहीं होता कि उसे सुनाई दे?
1: देखिए, नॉर्मली जैसे मैंने बोला, जन्मजात जब बच्चों का होता है तो कई बार ना मालफॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉकलिया मालफॉर्म्ड है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि हम कॉकलिया इम्प्लांट डाल ही ना पाए। तो अभी तो कॉकलिया इम्प्लांट जहाँ नहीं डलता है तो वहाँ पे नर्स ठीक नहीं है तो ऑडिटरी ब्रेनस्टेम इम्प्लांट ब्रेनस्टेम में करते हैं, वो भी अभी इंडिया में भी हुआ है काफ़ी जगह, तो ऑडिटरी ब्रेनस्टेम इम्प्लांट भी है जो हर जगह नहीं किए जा रहे बट अभी हो रहा है वो भी। तो ऐसे मतलब एक लेस प्रपोर्शन, एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन को हम हेल्प कर सकते हैं, बहुत एक कम प्रतिशत ही है जिनको हम बिल्कुल हेल्प ना कर पाए ऐसा।
0: क्या अब ये मानकर चलें कि पहले और आज के दौर में काफ़ी अंतर है, किसी ज़माने में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान की तरक्की ने बहुत सारे असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, चिकित्सा विज्ञान की तरक्की डेफिनेटली, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, तीसरी चीज़ गवर्नमेंटल सपोर्ट बहुत बड़ा है, NPPCD जो प्रोग्राम चल रहा है और बाकी भी मतलब बहुत बड़ी स्कीम्स से ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है टू लेस देन 5 ईयर्स चिल्ड्रन और उनके कुछ कुछ क्राइटेरिया है, तो बहुत से बहुत एक सब्सटेंशियल चेंज हुआ है हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के और बड़ों के मतलब ट्रीटमेंट में।
0: डॉक्टर मेहता, अगर हम उम्र की बात करें, कई बार ये होता है कि जब जागे तब सवेरा, बहुत से लोगों के यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुन नहीं पा रहे थे और लंबे समय तक बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि इसका भी अब उपचार किया जाना संभव है, और एक उम्र के बाद अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं और उम्र ज्यादा है तब भी क्या ये संभव है कि उनका उपचार किया जा सकता है जो उपचार आपने बताया है और वो अच्छे से सुन सकते हैं, बोल भी सकते हैं?
1: देखिए, उसमें ना ये जो है जैसे मैंने बोला कि कारण क्या है, कारण देखना बहुत जरूरी, कुछ होता है कि कुछ टाइम तक ठीक थे फिर कोई एक्सीडेंट हुआ और सुनाई चली गई, तो डेफिनेटली उनका हम मतलब उनका ये कर सकते हैं डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनको हियरिंग बहुत बेटर हो सकता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो ऑपरेशन करके उसका ठीक हो सकता है। अगर नस की कमजोरी है और जो बचपन से ही थी और हम नहीं मतलब उसका कुछ निदान नहीं हो पाया, कुछ नहीं दिखा पाया, और तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग हर मरीज को और हम लोग ये अवेयरनेस इसीलिए अवेयरनेस ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक बार दिखाएं, जितना जल्दी पकड़ में आएगा, क्योंकि वो 1% जो शुरू से नहीं सुन पाया और बोल नहीं पाया और नस की कमजोरी थी जिसकी, वो एक फिर लेटर स्टेज में मुश्किल हो जाता है, बट बाकी इन्फेक्शन है या पहले बोल पाते थे, कोई एक्सीडेंट की वजह से सुनाई कम हो गई, तो फिर वो रिहैबिलिटेट हो जाता है।
0: डॉक्टर मेहता, अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर किसी घर में कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है और उसको सुनने की समस्या है तो वे कौन से हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेकर जाएं, और जो शासन की जो सुविधाएं चल रही हैं, खासकर आयुष्मान योजना है या अन्य इस तरह की जो चिकित्सा लाभ प्रदान करने वाली योजनाएं हैं, क्या इनमें जैसा कि आपने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट भी लगाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या उस योजना के अंतर्गत फ्री में लोगों को मिल सकती हैं?
1: हाँ, मतलब पैकेजेस हैं BPL और APL और वो ऐसे अप्लाई करना रहता है, उसके एक सारे क्राइटेरिया होते हैं। और बाकी हियरिंग टेस्ट तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर हॉस्पिटल में होता है, कॉकलियर इम्प्लांट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, हमारे यहाँ एम्स में हो रहा है, फिर और भी एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शुरू हुआ है, तो ऐसा मतलब आजकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर बस अवेयरनेस होना जरूरी है कि सही टाइम पे दिखा दें, बाकी सहायता प्राप्त करना और करवाना सर्जरी इतना डिफिकल्ट नहीं है अभी।
0: डॉक्टर मेहता, एक मनुष्य को अपने शरीर के प्रत्येक अंग को लेकर सतर्क रहना, सावधान रहना और सुरक्षा अपनाना बहुत जरूरी होता है, खासकर आज के इस भागदौड़ के जीवन में। अगर हम कानों की सुरक्षा की बात करें तो आज हमारे आसपास के वातावरण में वे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे कान पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं?
1: सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है तेज आवाज, पटाखों की।

0: आवाज़, जो म्यूज़िक बजता है, लाउड स्पीकर्स, हर मतलब जो छोटे मोटे फेस्टिवल्स आते हैं तो स्पीकर पे इतना फुल वॉल्यूम,
1: डीजे
0: पब्स रेस्टोरेंट्स में जो तेज़ म्यूज़िक बजता है वो बहुत हानिकारक है। और इससे हमने बहुत रेगुलरली हम ओपीडीज में देखते हैं, मरीज़ आते हैं कि कान के पास पटाखा छूटा है, सुनाई कम हो गई, बिल्कुल सुनाई बंद हो गया, सुन हो गया कान। एक अभी हमारे पास रिसेंटली एक टीचर आए थे जो रामलीला कुछ थी गांव में, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, स्पीकर उनके पास था और उनका तेज़ आवाज़ से वो एक डेढ़ घंटा उन्होंने सुना और उनका ये चला गया। तो ये तेज़ जो ईयरफोन्स यूज़ करते हैं उसमें लाउड नॉइज सुनते हैं यंगस्टर स्पेशली, या फिर ट्रैफिक पुलिस या जो वर्कर्स फैक्ट्री वर्कर्स जो तेज़ आवाज़ से कंटिन्यूस रहते हैं, तो उसमें नस की कमज़ोरी होना बहुत कॉमन है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल हियरिंग लॉस का कॉज है। तो इसलिए उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप्स, पूरी सोसाइटी को जागरूक रहकर स्टेप्स लेना रहेगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबल हो जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और नस की कमज़ोरी होती है, तो नस की कमज़ोरी का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, फिर हियरिंग एड रहता है। और तो इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नॉइस का हम बचें, लाउड नॉइस से रेगुलर कंटिन्यूस एक होता है कंटिन्यूस, ठीक है थोड़ी देर के लिए हो गया बट फिर भी उसमें भी प्रिकॉशंस लें हम, है ना। तो एक लाउड नॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है, एनवायरमेंटल हो गया, आपको ऑक्यूपेशनल हो गया या फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्फेक्शन जब होता है ना कान से पीक निकलना, वो अभी भी हमारे रूरल सेटअप्स में कॉमन समझा जाता है, बच्चों को पीक निकलते और बूंदे डाल देते ख़त्म, दिखाते नहीं हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी जो अनसेफ ओटाइटिस मीडिया CSOM हम बोलते हैं, उससे वो ब्रेन तक वो इन्फेक्शन चला जाता है, नस मुँह का जो नस होती है उसको मतलब उसको अफेक्ट करके मुँह टेढ़ा हो जाता है, आँख बंद होना मतलब आँख नहीं बंद होती है, ये सब प्रॉब्लम्स अभी भी इंडिया में देखा जा रहा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग अवेयर रहते हैं, जल्दी दिखा देते हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशन कम है। अभी भी हमारे पास कान की वजह से ब्रेन में एब्सेस, ब्रेन में पस भर जाना, ये सब कॉमन है। तो कान के इन्फेक्शन को इजी मतलब इतना लाइटली ना लें, केवल ईयर ड्रॉप से दिखा, बिना दिखाए ईयर ड्रॉप डाल दिया और फिर उसके आगे भूल गए, उसको नहीं पूरा चेकअप कराया, पूरा ट्रीटमेंट कराया, तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रिवेंटेबल है। तीसरी कुछ वैक्सीन है वो दे दें चाहिए, मीजल्स मम्स रुबेला, उससे बचता है। और चौथा डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, इसको हम अच्छे से कंट्रोल करें, जैसे ये आइज़ को भी अफेक्ट करते हैं वैसे ईयर्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो शुगर है यदि या बीपी है तो उसके बराबर दवाई लें, उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखें, तो ये सब करने से हम हियरिंग हाइजीन अच्छा रख सकते हैं, हियरिंग ईयर्स अच्छे रख सकते हैं। और सेल्फ क्लीनिंग ना करें, उससे भी ट्रॉमा और इन्फेक्शन होते हैं, तो सेल्फ क्लीनिंग ना करें, ड्रॉप्स डाल के हॉस्पिटल जाके क्लीन कराएं यदि ईयर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो।
1: एक बात और देखी गई है कि लोगों को जब भी कान में खुजली होती है तब वो मार्केट में जो बर्ड्स मिलते हैं वो बर्ड्स खरीद कर लाते हैं और खुद ही कान में खुजाने के आदि हो जाते हैं, कुछ लोग तो माचिस की तीली भी डालते हैं, इस तरह की लोगों को आदत पड़ जाती है, ये कानों के लिए कितना नुकसानदायक है?
0: देखिए बर्ड्स तो आगे का एंड उसका बहुत मोटा होता है, तो वो और उसको ना मतलब वैक्स को अंदर की तरफ ही ढकेलता है निकालने के बजाय, तो वैक्स बर्ड्स तो हम एडवाइज़ नहीं करते हैं। और कान की तीली और ये वो तो हमने बहुत बार देखा है, वो अंदर टूट जाती है फिर वो लेके आते हैं
1: जी,
0: बहुत सारे मरीज वो मेटल से की से क्लीन करते हैं, हाँ। तो उससे वो ट्रॉमा हो जाता है, एक्सट्रॉडरी केनाल की स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो उसमें वो ब्लड आ जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ड्रॉप्स आती हैं जैसे मैंने बोला वैक्स के लिए, या इचिंग हो रही है तो आप ड्रॉप्स डाल दें, उसको थोड़ा लुब्रिकेट हो जाता है तो उससे आराम मिलता है।
1: डॉक्टर मेहता, आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समाज में समस्या देखी जा रही है वो है समारोह में तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाना, खासकर डीजे का प्रयोग किया जाता है, या फिर एक दौर था जब बड़े ही मधुर संगीत के साथ बैंड वादक बारात में दिखाई देते थे, लेकिन अब बारात से बैंड वादक लुप्त हो गए हैं और अब वो धुमाल और डीजे ही दिखाई देता है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं लेकिन लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता का अभाव। बहुत तेज़ आवाज़ में वो डीजे होता है, इतनी तेज़ उसकी आवाज़ होती है कि कई लोगों को तो दिल की भी समस्या उसकी वजह से होती है। तो इस तरह के समारोह में जब मेहमान बहुत दूर दूर से आते हैं और वो आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं, आवाज़ इतनी तेज़ होती है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप?
0: देखिए मतलब बहुत हानिकारक है, जिनको जब तक तकलीफ नहीं होती तब तक समझते नहीं है, वो वाली बात है
1: जी।
0: जिनको तकलीफ फिर अचानक से, कितने मैंने बताया यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास जिनका यही पूरा एक कान चला जाता था, उसको फिर हम बताते हैं भाई दूसरे कान का ध्यान रखना, क्योंकि वही आपका सुनने का मतलब। एक हेलेन केलर करके एक डेफ और ब्लाइंड लेडी थी जो बहुत फेमस, उन्होंने बुक्स भी लिखी, तो उन्होंने यही लिखा कि डेफनेस जो है वो इंसान को इंसान से अलग करती है, वो अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, और ब्लाइंडनेस इंसान को एनवायरनमेंट से अलग करती है। तो जब तक हम ईयर का इंपॉर्टेंस तभी हमें समझ आता है जब हमारी हियरिंग लॉस होता है, वो वाली बात है, इसलिए इतनी जागरूकता नहीं है। बट यही हमारा प्रयास भी रहता है एज अ डॉक्टर, हम लोग बताते हैं कि तेज आवाज़ बहुत बहुत नुकसानदायक है, और बहुत सारे रीजन, डीजे हो गया, पटाखे हो गए, आप और फैक्ट्रीज में होता है, तो ये नॉइस एक्सपोजर, जो लाउड नॉइस एक्सपोजर, किसी भी हाल में हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि एसएन लॉस, रिवर्सिबल एसएन लॉस करता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत प्रॉब्लम करता है आगे, उसके आगे फिर कुछ मतलब हियरिंग एड के अलावा कुछ रहता नहीं है इलाज, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट किया जाए लाउड नॉइस।
1: एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है, अगर हम महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित बात करें तो ईयर रिंग्स पहनने का जो रिवाज है वो हमारे सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, तो खासकर महिलाओं के लिए इसको लेकर भी कोई हिदायत आप देना चाहेंगी?
0: नहीं, जो ईयर पियर्सिंग लोब्यूल में जो करते हैं वो तो जो मतलब प्राचीन समय से चला रहा है उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो करवाना चाहिए, उसमें कुछ कुछ मतलब उसमें है, पीछे साइंस भी है। बट ये जो कई बार इधर अलग अलग जगह जो लगाते हैं कार्टिलेज में, तो वो मतलब यंगस्टर्स लगाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, बट सही टेक्निक से, एसेप्टिक टेक्निक से, इससे इन्फेक्शन ना हो, अच्छी जगह से जाके लगवाएं करें कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कार्टिलेज में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत टाइम से लेता है ठीक होने में, और पेनफुल भी बहुत रहता है। तो बस साफ सुथरी जगह से, अच्छे से क्लीन जगह से करवाएं, और जितना हो सके लोब्यूल में करवाएं, बट फिर भी यदि कराना है तो वो पर्सनल चॉइस है, इन्फेक्शन हो जाए तो मुश्किल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
1: तो श्रोताओं, डॉक्टर रूपा मेहता जी ने बताया कि हमें जब भी अपने कान में छिद्र करवाना हो या फिर गहने को पहनने के लिए जो ईयर रिंग्स पहनी जाती है जिसे बाली कहा जाता है, उसे पहनने के लिए जब भी कानों में छिद्र करवाएं तो किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाएं। हमें दुनिया की हर आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने कानों को भी सुरक्षित रखें, और आज की तारीख में कानों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बात डॉक्टर साहिबा ने बताई वो यही है कि हमें तेज आवाज से बचना है। तो डॉक्टर रूपा मेहता जी, आज आपने कान से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण भी किया जा रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वही इसके ठीक पश्चात यानी कि 9:10 पर पद्म पुरस्कार पर आधारित पॉडकास्ट का 30वां भाग का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

अभी आप सुन रहे थे रांझना फिल्म का गाना, आवाज़ें थी मधुश्री आंचल सेठी और सखियों की, रियाज कामिल ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था एआर रहमान ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जॉनिटा गांधी की आवाज में दंगल फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन दिवस। इसका उद्देश्य महिलाओं में प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर बीमारी प्रसूति फिस्टुला के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। इस रोग के कारण महिलाओं को शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा और मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है। ये समस्या

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजन जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा उसको मैंने सही समझा, तो लगीरों ने 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
2: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर,
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ, हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
3: सहज,
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही, तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि एक साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो। और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
2: अच्छा।
3: तो पिताजी ने कहा तुम आज सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
2: जी।
3: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस था। 12 साल मैं बजा चुका और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर हो जाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता ही नहीं। पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओंकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
4: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
3: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
4: अच्छा।
3: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
4: जी।
3: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
4: हाँ।
3: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
4: जी
3: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा। तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
4: और पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ?
3: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
4: जी,
3: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी
4: जी। जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
3: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
4: जी।
3: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
4: हाँ जी।
3: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि ये हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
4: जी जी,
3: उसकी बू जो है, उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
4: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधकों निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
3: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
4: जी, जी।
3: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
4: दिल्कुण, दिल्कुण।
3: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
4: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्ण साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
3: बिल्कुल।
4: तो ये सवाल ऐसा है,
3: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
4: अच्छा।
3: मेरे पेरेंट्स के।
4: हाँ।
3: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
4: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? मिठाई को लेके होता था या वाली
3: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं जी, जी. तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था.
4: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
3: वायलिन में इंस्ट्रूमेंट में,
4: इंस्ट्रूमेंट
3: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी. इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट.
4: क्या बात. अमर जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए. जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
3: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
4: जी,
3: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है. इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए.
4: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं. आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी. तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
3: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई. बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ. निसार हुसैन खान साहब एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से लोगों का. बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे.
4: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं. मजी आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी वो बहुत ही पॉपुलर
3: है, उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया.
4: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
3: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस

0: के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: था। बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को।
1: जी,
0: बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ा पुण्य, पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे साथ भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो तब वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है।
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे है। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था और आवाजें हो रही थी लोग अब। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा तो वो देख रहे हैं कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहा आने वाले हैं प्रोग्राम में बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बार जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वहां के बैठे, जब आए तो हाँ चल भैया, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट रात देश बचाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे ये हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का, तो बताएंगे। तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सी करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे वाले।

0: समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना नहीं तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगे?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाइवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत केवीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। शेख ने लिखी फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

0: 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी और राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 96 पैसे महंगा हुआ है। रायपुर में आज सुबह से पेट्रोल 105 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी तीसरी बार हुई है। राज्य शासन ने कल जारी आदेश में सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनके लिए अब अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल 24 मई तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। माई भारत और जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आज दंतेवाड़ा जिले के शिक्षित और कुशल युवाओं के लिए विशेष प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से चयनित स्थानीय युवाओं को NMDC दंतेवाड़ा में इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित होने वाले प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह 9,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 6,000 रुपये का एकमुश्त ज्वाइनिंग बोनस भी देय होगा। ये पंजीकरण शिविर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक NMDC DAV पॉलिटेक्निक कॉलेज जवांगा दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया। साथ ही करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बने शंकरनगर खमाड़ी कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा राजधानी में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान ने सुगम संगीत पेश किया। उन्होंने कबीर के सूफी कलाम गाए, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उप शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। दोनों ही गायकों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान स्वागत उद्बोधन आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने दिया, वहीं आभार प्रदर्शन कार्यक्रम प्रमुख पंकज मेश्राम ने किया। नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम के अंतर्गत बीजापुर जिले के उसूर विकास खंड ने 2025 में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सेंट्रल इंडिया जोन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी और राज्य शासन ने सभी पेट्रोल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी 10:10 पर हमारे केंद्र से आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 बजे का। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे, अपराह्न 12 बजे से और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम का समय होगा शाम 5:10 का।

महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आपस की बात का विषय होगा नशे के बढ़ते प्रभाव और परिवार पर इसके दुष्परिणाम। इसके साथ ही शासकीय योजना के अंतर्गत सुनेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विषय पर जानकारी। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। कृषकों का कार्यक्रम किसानवाड़ी का समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा सब्जियों में जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग में रखें प्रतीक्षा अवधि का ध्यान। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनेगा भविष्य की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम।

वैरवी में गीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:20 पर, विविध संगीत रात्रि 10 बजे और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।

0: स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी अभी आप सुन रहे हैं। मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 तोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

Akashwadi at 90. ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। पेश खिदमत है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश में लीजिए सुनिए तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल के युगल स्वर में ये बहुत ही प्यारा गाना। रचना कुमार वर्मा की है और संगीत पायल देव का।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

यसीर देसाई व साथियों के गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे। रचना शकील आजमी की थी और संगीता हरीश सागरी का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए कौशल किशोर की रचना को। स्वर व संगीत है विशाल मिश्र का।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे कुमार सानू और आस्था गिल व साथियों के गाए इस गीत को, जिसे लिखा राजा दिलवाला ने और संगीत था हितेन का। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे सभी सुनने वालों को मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी का प्यार भरा नमस्कार और आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में पसंदीदा सफर में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आपके पसंदीदा गाने के साथ जिसे पसंद किया पत्र आया रिंगली छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। यह गीत सुनना चाहा पसंद किया पत्र आया गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता रीना नेहा यीशु और अंशु गुप्ता का। आदर्श नगर मलोट से ये पत्र आया फरमाइश करता है राज शर्मा मीना योगेश बैंडी सौरव शाइना और निमान शर्मा। यह गीत सुनना चाहा पत्र आया सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से है टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक नवनीत राय डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा और कालका से यह गीत सुनना चाहा पत्र आया शुभचंद्र बजाज बिट्टा और साहिल का। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर हम आपकी हैं कौन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम के युगल स्वर में। गीत लिखा देव कोहली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: आकाशवाणी F90।
1: जय जोहार संगवारी हो, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार भगत, अतिथि शिक्षक कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र रायगढ़ ले बोला हूँ। आज मैं बहुत गर्व और खुशी के संग आकाशवाणी के 90 बच्चर पूर्ण होए के अवसर में अपन विचार रखत हूँ। आकाशवाणी जिन हमन ऑल इंडिया रेडियो के नाम ले जानतन, सिर्फ रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि देश की आवाज है। 1936 में शुरू हुआ ये सफर घनो आज घनो लगातार चलत हवे और हर पीढ़ी ला जोड़त हवे। आकाशवाणी हर भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण घड़ी में अपन योगदान दे हवे, खास करके भारत स्वतंत्रता संग्राम के वक्त जब जानकारी के संसाधन बहुत कम रहे, तब आकाशवाणी हर जन जन तक सच्ची खबर पहुंचाए और देशभक्ति की भावना ला जगाए। ये संस्था के सबसे बड़े ताकत है कर पहुंच, शहर हो या गांव, जंगल हो या पहाड़, हर जगह आकाशवाणी की आवाज गूंजे लगते। आज घलो कई गांव में रेडियो लोगों के जिंदगी के जरूरी हिस्सा है। आकाशवाणी है सिर्फ खबर नहीं बल्कि सिखाई और संस्कृति के माध्यम है। ये किसान मन बर खेती किसानी की जानकारी, छात्र मन बर शैक्षणिक कार्यक्रम और आम जनता बर मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत करत हवे। हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत, बोली, संस्कृति और परंपरा ला बढ़ावा देने में घलोक आकाशवाणी के बहुत बड़ा योगदान हुआ। कतको कलाकार मन अपन पहचान यही मंच ले बनाई। आज के आधुनिक डिजिटल जमाना में जब मोबाइल और इंटरनेट के दौर चलत हवे, तबो घलोक आकाशवाणी अपन महत्व बनाए रखे हवे। FM रेडियो, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्रसारण के जरिए ये नई पीढ़ी ला घलो जोड़त हवे। आकाशवाणी के ये 90 बच्चर के सफर हमें सिखाते कि सच्ची जानकारी, सेवा भावना और जनता ले जुड़ाव कभी पूरा नहीं हुए। अंत में मैं यही कहूँ कि आकाशवाणी हर देश के दिल की आवाज आए, जिन 90 बच्चर ले हमन संग जुड़े हवे और आगो घलोक ऐसने सेवा करत रहे। जोहार, धन्यवाद।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर ये गाना। इसके लिए फरमाइश की पत्राया ग्राम बगबुड़वा पथरिया से है नरीन नेताम कुसुम नेताम। यह गीत पसंद किया पत्राया छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा यही गाने के पसंद करता। पत्र लिखा महादेव घाटमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। यह गीत सुनना चाहा पत्र आया आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। यह गीत पसंद किया पत्राया पुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारासर, बेबी आराध्या और ललन मिश्रा का। इसी गीत की फरमाइश की पत्राया मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से है BK मिश्रा, गुंजन पारासर, अमित सुमित छोटू और लल्लू पंडित। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर रंग फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना अलका याग्निक और कुमार सानू को, ये गुलसर में। गीत लिखा समीर ने और संगीत है नदीम शमर का। प्रोग्राम का नाम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर, इसके लिए फरमाइश की आप सबने पीपरपाड़ा पालचौ मुंगेली छत्तीसगढ़ से, उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन वंशिका और भानुप्रिया दिवाकर, यह गीत पसंद किया। पत्राया श्रृंगेरेशी महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से है मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, यह गीत सुनना चाह पत्राया आप सबका। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन, यह गीत पसंद किया पत्राया। डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राशपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये, यह गीत पसंद किया पत्राया। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन, इसी गाने की फरमाइश आई पत्राया। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से का यह गीत सुनना चाह। इंदिरा नगर रायगढ़ से ये पत्राया शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नीम राजा, लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर विवाह फिल्म का ये गाना। उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में गीत संगीत रविन्द्र जैन का है।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला और अंतिम गीत लीजिए, सुनिए फिल्म अर्पण से, जिसे सुनना चाहा आप सबने। इसके लिए पत्र आया झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला, हर्ष, शुभम और कन्हैया लाल तीर्थानी का। ये गीत सुनना चाहा जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम और चांदनी नाज। इसी गीत के फरमाइश करता है पत्राया सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरिया से है कारी राय, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली साकरा से। यही गीत सुनना चाहा पत्राया जयंत कुमार बैरागी का। लीजिए सुनिए अर्पण फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसके लिए नोट करें पत्र व्यवहार का पता। पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़। पिन संख्या है 496001। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shrotarayagarh@gmail.com पर। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश से मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है विविध भारती। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली, इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार है साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है।

0: इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
1: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा आरपीएफ कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएससी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एप 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।

के परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी।

0: और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक में हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लीड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही है। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें। और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले से जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने। आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत की विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डर सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरेली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।
4: ये नहीं।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब का संगीत, कैफी आजमी की बोल, सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम संकल्प।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है। यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज़ दी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहां दो अलग अलग महिला आवाज़ें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, गीता दत्त की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाजें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहां।

सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूँ कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे। बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक ही ढूंढ पाया हूँ। बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है। ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है। खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां। मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया गौरी, तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गानों और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मेल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा, बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन की बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं, बिल्कुल आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया समझो, अरे वाह क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है। आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं की लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद है। जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत। Oh

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा

के मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वही श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी, जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी, कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था, बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच ही कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहाँ तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को, शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं, तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफ़र में तो सफ़र सुरीला कैसे नहीं होगा, अगर आप हैं हमारे साथ तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बहार आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है। इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचना ही थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश हैं और काफी हंसमुख लग रही हैं। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गाँव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हुई है, युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बहका हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरेला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखे ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है, अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें। ऐसा प्रयास करके तो देखें, जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ज्योदितोर डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब

0: में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित दो स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार है पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: मना
1: ना कोई मारे कोई किसी को
0: ना कोई खाए मांस किसी का
1: ना कोई पीवे खून किसी का
0: ना कोई रोके सांस

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमती, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैक्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर है। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है

बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे,

श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी

0: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
0: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
0: चूड़ावत जी,
2: महाराणा,
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
2: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
0: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
3: जी, महाराज,
0: राणा हाड़ा को ये शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी,
4: जी महाराणा,
0: सामन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामंत, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे,
3: यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ।

0: बुलाऊं?
1: नहीं भैया,
2: मैं जाती हूँ।
3: तारा सुन।
4: जी
3: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
4: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
3: बस अब खूब मजा आएगा।
4: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। कौन?
5: स्वागत है।
4: ओह आप यहाँ?
5: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
4: ना,
5: हाँ
4: ना,
5: अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
4: स्वामी, मेरे देवता,
5: सच
4: मैं तुम्हारी पुजार।
6: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
5: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
6: नगर की राजकुमारी
5: चंद्रमुखी, जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
6: नगर के राजा ने
4: स्वामी
6: हमारे महाराणा से
4: पागलपन
6: सहायता की प्रार्थना की है। महाराणा के
5: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
4: स्वामी,
5: कमल के कोमल संपुट में बंद भ्रमर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
4: सुना आपने?
5: इधर
4: स्वामी।
5: प्रिय,
4: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
5: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
4: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
5: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
4: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
5: प्रियतम,
4: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
5: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था, तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
4: स्वामी, ये केवल आपका मोह और वासना है।
5: रानी,

0: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी,
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
0: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
1: रानी ठहरो,
0: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
1: हूँ। ठहरो रानी,
0: ये हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
1: रानी ठहरो।
0: नहीं
1: रानी, सुनो तुम।
0: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधोर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर ये कलंक का टीका नहीं सह।
1: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
0: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
1: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
0: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रख तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
1: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
0: नाना,
1: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
0: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य विजय दें।

0: कितनी सुंदर है हरी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण से उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रणसिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: महारानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हार जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
4: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
4: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
4: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली,
2: रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकर, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। हाँ, ऐसे। दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे, अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। परंतु जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे रोती है? ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शेष रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना। और कहना कहना रानी ने यह विजय मार

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह, ये क्या लाए हो? हमारी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक ना लगे इसलिए।
2: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया। हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण सिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
3: विजय हमारी है।
0: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही है।
2: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
2: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी। मैं चाहता हूँ।
4: सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
1: जी। सामंत,
4: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
1: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था, लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तरफ से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना और उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन भी था। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे एक दो घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम दो दो तीन तीन घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
2: ओके।
3: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत
2: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मेरा मैंने 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे लाइक फागे होती थी।
2: हाँ।
3: तो उसी तरह से कि कहां ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहां ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहाँ ले आए,
2: उपटा लगत उंगरिया, क्या उंगरिया बात है ना,
3: कहाँ ले आए राजा कुमारिया में,
2: मतलब बुंदेलखंड
3: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूँ कि मैं तो बम्बई रहता हूँ और फिर मैं वहाँ छोटे से कमरे में रख दूँ, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
2: तो मजा आ गया,
3: बहुत ही मजा आ गया, बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
2: हाँ।
3: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
2: अच्छा।
3: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
2: अरे बाप,
3: मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय।
2: ठीक है।
3: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हमारी छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे।
2: हाँ।
3: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे लाइक,
2: तो बुंदेली में था ये?
3: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
2: हाँ।
3: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो तो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसी शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान,
2: जो
3: कि काफी बड़े एक्टर
2: हैं,
3: जो पन्ना के ही हैं। तो वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-star होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक महीने रहना है। तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है, इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
2: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
3: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है,
2: डायरी में लिख गया।
3: हाँ, तो मैं लिख लिया अभी मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहां
2: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
3: जी जी,
2: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
3: हाँ जी जी,
2: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
3: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम गाना सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का मारा तुझे पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
2: क्या बात है।
3: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
2: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके
3: जी जी जी। हमने बहुत देखा है फिल्म को,
2: वाह
3: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
2: क्या
3: भी सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
2: वाह ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है।
1: जी जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद में दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है,
0: तो मंडी हाउस चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 26-26 फोन हुआ करता था,
0: हाँ वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस रिकॉर्ड कर दो,
1: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब,
1: और तुम अनुशासित हो।
0: एक मिनट में सब
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो कॉलेज में इस शहर में था,
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक

0: कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको, कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल
0: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
0: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है प्लीज, मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा,
1: बिल्कुल
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदो को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं आना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने,
1: वाह वाह,
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: कहते हैं देवेंद्र,
0: उस समय ये बुंदेलखंड के कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस वहां खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चढ़ाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है, तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें एक डायलॉग था ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ, फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था, तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल, सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है, तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्ड ही हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने, तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी, और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कवि

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पता चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर
1: गाना
0: गाना
1: है।
0: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली भी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
0: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
0: हाँ।
1: वो तो मैं, मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार। तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके।
1: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया,
0: और वहीं वो
1: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर,
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी प्रतिभा मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया, उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
1: मैं बताऊं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था,
0: हाँ,
1: तो लोग हंसते थे,
0: हाँ,
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ, हाँ। हाँ,
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, हाँ, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
0: शक को सा बोल रहे हो,
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया,
0: हाँ,
1: जो हमारे बैंड का मंडिया हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना,
0: हाँ,
1: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा वो सही बोला था,
0: हाँ,
1: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके, ओके।
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरोध खुटवर सर, और मैंने, मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है और लगातार बोलना है और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनेजम पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा, तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल
1: तुम्हारी एफर्टलेस में दिखती है। तो ऐसा करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
0: बंसी कॉल
1: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया,
0: मुखौटा।
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजवाब लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल
1: देखे हमने। अविलाश पिल्ले सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
0: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना बोल रहा हूँ, सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
0: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
1: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये पता था कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि रेडियो का बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
0: उसका एक गाना सुनाओ यार,
1: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
0: बिल्कुल
1: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के बदल दी। उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होकर ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गाँव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
0: क्या पै पै पै
1: पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
0: वाह।
1: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
0: क्या बात है, बढ़िया गाना। जी जी जी। कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
1: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
0: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
1: जी जी,
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
1: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविन सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविन सर काम कर रहे, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था। और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था गाना, उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
0: बिल्कुल
1: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
0: वाह वाह,
1: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
0: वाह,
1: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
0: क्या सुन
1: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
0: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
1: जी जी जी।
0: तो फिर कभी मिलेंगे और
1: बन्दर।
0: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
0: बिल्कुल,
1: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जुदैया मैं कैसे कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं, सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है जो फोक है वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आपके साथ बैठा हुआ था,
0: सफर है,
1: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदादन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा,
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आयोजित कार्यक्रम हमारे हाथी हमारे गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक पुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पोड़िपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांड गांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 140 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओर, अमलोर, ताराजय, डडईपानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आकाशवाणी केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे आज रात्रि 9 बजे। संध्या 5:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम वनिता विहार का विषय होगा नशे के प्रभाव और परिवार पर उसके दुष्परिणाम। प्रधानमंत्री वंदन योजना के विषय में जानकारी दी जाएगी। फिर 6:20 पर और 8:20 पर समय होगा फिल्म संगीत का और नेटवर्क हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शास्त्र कार्यक्रम। संध्या 7:20 पर दर्शकों के प्रयोग में रखे प्रतीक्षा अवधि का ध्यान। संतुलन के लिए वृक्षारोपण आज का टिप कृषक प्रश्न आज का मंडी भाव और आज का मौसम सुन रहे थे। 9.7 MHz पर
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: आकाशवाणी @90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार।

वनिता विहार सुनने वाली सभी बहनों को रश्मि शरण का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, गर्मी के प्रकोप के कारण हम सभी परेशान हैं, और लेकिन इस समय हम आपके साथ हैं कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ, और साथ में हम सुनेंगे कुछ नए पुराने गीत जो राहत तो देंगे ही और सुकून का भी एहसास कराएंगे। बहनों, गर्मी से बचने के लिए हमेशा पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, साथ ही लू से बचने के लिए आम पना नींबू पानी भी जरूर पीते रहें। ज्यादा देर तक पेट को खाली नहीं रहने दें, और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहना भी जरूरी है, लेकिन तेल मसालों से दूर रहें और पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जी जरूर खाएं। बहनों, हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसका अच्छे से देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी, और इसके लिए हमें अनुशासन की जरूरत होती है। स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन का पालन करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन जब हम ये अनुशासन तोड़ते हैं और ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, तब हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और नशे का सेवन उनमें से एक है जो सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं करता, बल्कि समाज और परिवार को भी इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बहनों, नशा आज के समय में एक वैश्विक चुनौती है। यह न केवल

नशे की लत में व्यक्ति मनोविकार से पीड़ित हो जाता है और हिंसा का भी सहारा लेता है। घर के सदस्यों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार बढ़ता है और जब ऐसी स्थिति आती है तो विश्वास भी टूटने लगता है। व्यक्ति को झूठ बोलना, चोरी करना जैसी गलत आदतें लग जाती हैं और जिन बच्चों के अभिभावक नशे के आदि होते हैं उनके बच्चे भावनात्मक और शारीरिक उपेक्षा का शिकार होते हैं। वे असुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें अपराध बोध और मानसिक अस्थिरता पैदा होती है। परिवार को समाज में शर्मिंदगी और अलगाव का भी सामना करना पड़ सकता है। बहनों, नशे के परिणाम व्यापक होते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करते हैं और उनके परिवार और समाज को भी प्रभावित करते हैं। यह एक तरह से बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जो व्यक्ति के आनुवांशिक संरचना को भी प्रभावित करता है। बहनों, इसका परिणाम सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य पर भी होता है। यह व्यक्ति और उनके आसपास के लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर देता है। इसलिए बहनों, ये बहुत जरूरी है कि किसी भी नशे के लत से हमेशा दूर रहने का प्रयास करें और अगर किसी को इसकी लत लग गई है तो उसे कैसे बाहर निकाला जाए इसके लिए भी उपाय जरूर सोचा जाए, क्योंकि आज के समय में यह एक बहुत बढ़ती हुई समस्या है और इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। बहनों, ये थी आज हमारे आपस की बात। अभी वक्त है एक गीत सुनने का।

बहनों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख मातृत्व लाभ योजना है। इसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 और दूसरे बच्चे के रूप में अगर बालिका के जन्म पर 6,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना, मजदूरी की हानि की आंशिक भरपाई करना और प्रसव से जुड़े जोखिमों को कम करना है। इसमें वित्तीय सहायता पहले बच्चे पर 5,000 की राशि दो किस्तों में गर्भावस्था के पंजीकरण पर और प्रसव पूर्व जांच पूरी होने के बाद दी जाती है। दूसरे बच्चे पर यदि दूसरा बच्चा लड़की होती है तो महिला को 6,000 की अतिरिक्त सहायता मिलती है। पूरी सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक या डाकघर खाते में जमा की जाती है। सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बहनों, अभी वक्त है एक और गीत सुनने का।

बहनों, गर्मी के मौसम में चलने वाली बेहद गर्म और सूखी हवा को लू कहते हैं, और जब तापमान बहुत ज्यादा 40 डिग्री से ऊपर हो और हवा में नमी कम हो तो लू चलती है, और यह शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकती है, विशेष करके छोटे बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जो लोग दिन में बाहर काम करते हैं, उनको इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। मई और जून के महीनों में खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच लू चलने का खतरा अधिक होता है। लू लगने पर मरीज खुद में कुछ लक्षणों को अनुभव कर सकता है, जैसे सिर दर्द और चक्कर आना, बहुत तेज प्यास लगना, त्वचा का लाल और सूखा हो जाना, उल्टी या मतली की शिकायत होना, कमजोरी और थकावट महसूस होना। कई कारणों से आपको लू लग सकता है। इसके मुख्य कारणों में शामिल होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा देर तक धूप में बाहर रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएं, गर्मी में भारी काम करें, धूप में सिर और शरीर को बिना ढके बाहर निकल जाएं, पसीना अधिक आना और नमक की कमी होना, और शरीर का तापमान कंट्रोल में नहीं रहना। बहनों, अगर लू लग भी जाए या फिर हम लू से बचाव के लिए कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, जिनकी मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है और इनसे बचा भी जा सकता है। जैसे प्याज का उपयोग करें, सलाद में आप उसे खा सकते हैं, कच्चे आम का शरबत पी सकते हैं, नींबू पानी और नमक शक्कर का घोल पी सकते हैं, धूप में निकलने से पहले छाछ या बेल का शरबत भी पिया जा सकता है। धूप में निकलने से पहले सिर और कान को अच्छी तरह ढक के जाएं, जिससे कान से हवा न जाए। हल्के और ढीले सूती वस्त्र पहनें। दिन के समय, जब समय 12 से 3 बजे तक, जितना संभव है घर से बाहर न निकलें। तुलसी और गुलकंद का भी हम सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी, तरबूज, खरबूज जैसे रसीले फलों का सेवन पर्याप्त मात्रा में कीजिए, और अगर लू लग गया है तो पानी में ORS घोल मिलाकर पी सकते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक की स्थिति बढ़ती है। जब इंसान को लू लग जाता है तो शरीर में जो बदलाव होते हैं उनमें तेज बुखार हो सकता है, तो उस समय पूरे शरीर को ठंडे पानी के पट्टी से पोंछ दीजिए, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाए। तेज धूप में रहने से दिमाग पर असर होता है, व्यक्ति को तेज सिर दर्द और चक्कर आने लगते हैं, और कभी कभी यह चक्कर बेहोशी तक भी ले जा सकते हैं, तो इसके लिए नमक और शक्कर के पानी का घोल हमेशा पीते रहना बहुत जरूरी है। त्वचा लाल और अगर सूखी हो गई है तो त्वचा पर प्याज रगड़ सकते हैं, जिससे उसकी जलन कम हो जाए, और अगर उल्टी या मतली आने के कारण आप पानी पिए, ORS का घोल पीजिए, क्योंकि लू लगने पर कमजोरी और थकावट बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उस समय आप ORS का घोल जरूर पिए, और अगर समस्या बढ़ जाती है तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लीजिए। बहनों, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपना बचाव खुद करें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि काम हम रोक नहीं सकते, कई बार हमें बाहर जाना ही होता है काम करने के लिए, इसलिए अपने आप को हमेशा बचा के रखें और इस तरह से हम लू से बच सकते हैं। बहनों, अभी वक्त है एक और गीत सुनने का।

0: दोनों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अनुमति दीजिए आपकी बहन रश्मि शरण को। नमस्कार।
1: महिलाओं का कार्यक्रम पुनीता विहार। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सौ दशमलव 7 मेगाहर्ट्ज़ पर हुए हैं।

से हम प्रचारित करेंगे सरकार में आयोजित 19वें रोजगार मेले की रेडियो रिपोर्ट प्रचारित करेंगे होने पर रिपोर्ट।

Geht. Ein होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम क्या आज की बात का विषय होगा के प्रयोग में ध्यान

0: का टिप, कृषक प्रश्नोच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम सुन रहे थे।
1: अरे जा तो सब्जी बाजार में नींबू और मिर्ची लेकर क्या नहीं दुकान तू तो देख रहा है दिन भर दस ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार
1: ये रहे।
2: क्यों नहीं।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हम आकाशवाणी रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:10 हुए हैं। कुछ छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायभली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला बांटी नियुक्ति पत्र। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घो फिर बढ़ गए है। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हुए है। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले आने आने सरकारी विभाग और संगठन मन में चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला नियुक्ति पत्र बांटिन। ये मौका में श्री मोदी कहिन कि सरकारी नौकरी नागरिक मन के जीवन ला बेहतर और आसान बनाए के महत्वपूर्ण माध्यम हरय। प्रधानमंत्री कहिन कि देश अपन कर्मयोगी मन ऊपर भरोसा जताए है और अब ये उखर जिम्मेदारी हरय कि ओमन अपन लगन आचरण और रोजमर्रा के काम ले वो भरोसा के मान रखें और ओला और मजबूत करें। श्री मोदी कहिन कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा के हिस्सा बने बर उत्सुक है। प्रधानमंत्री कहिन कि हर भारतीय देश ला विकसित भारत बनाए के संकल्प के संग काम करत है। श्री मोदी नव नियुक्त कर्मचारी मल्ला आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करे बर प्रोत्साहित घलो करें। रोजगार मेला आज देश में 47 अलग अलग जगह मन में आयोजित करेगी। रायपुर में ये आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा के उपस्थिति में 257 युवा मल्ला नियुक्ति पत्र सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प लाला धरातल में उतारे बर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय डहर ले नवा रायपुर में पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्य मन के क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करेगी। एमा छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी मन शामिल होइन। कार्यशाला के अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी करें। कार्यशाला में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के पहल संचालित योजना मन के प्रगति के समीक्षा करेगी। विशेषज्ञ मन बताएं कि पैक्स समिति मल्ला केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं रख के बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित करे जाते। एकर तहत खाद वितरण, खाद बीज वितरण, धान खरीदी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डेयरी, मत्स्य पालन, वेयर हाउसिंग और ग्रामीण उद्यमिता जैसे गतिविधि मल्ला बढ़ावा दे जाते। एकर ले किसान और ग्रामीण मल्ला गांव स्तर में ही बेहतर सुविधा और रोजगार के अवसर मिले। पेट्रोल और डीजल के दाम एक घो फिर बढ़ गए है। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हुए है। रायपुर में अब पेट्रोल 105.36 रुपया और डीजल 98.47 रुपया प्रति लीटर मिलत है। 5-10 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी तीसरैया घाव हुए है। इस बीच राज्य शासन काली जारी आदेश में सबो पेट्रोल डीजल पंप मन में ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन के बिक्री ऊपर तत्काल रोक लगा दे है। हालांकि रबी खरीफ सीजन पर किसान कलेक्टर मंडहरले चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्य और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसे अत्यावश्यक सेवा मल्ला ये प्रतिबंध में छूट दे गए है। एकर बर अनुविभागीय अधिकारी परीक्षण के बाद सुरक्षा मानक मन के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। प्रदेश के आने आने जिला में डायल 112 के जगह अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराए जाते हैं। यही कड़ी में आज मुंगेली जिला में घलो ये सुविधा शुरू हो गई है। जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और दूसर वरिष्ठ अधिकारी मनहा हरी झंडी दिखा के ये वैन ला रवाना करें। ये कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण कर इला आम जनता ला सौंपिन। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र डिले कर ही। ये बखत के अंक में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हौ।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगो बढ़ो बाकी समाचार को ते। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाही। ये परीक्षा दो पाली में होही। पहली पाली बिहनिया 9:30 ले 11:30 तक और दूसरिया पाली बंझनिया 2:30 ले 4:30 तक होही। दोनों पाली में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र के दरवाजा बंद कर दे जाही। ये बखत परीक्षार्थी मन ला फेस स्कैन सिस्टम ले गुजरना होही। चेहरा मैच होने के बाद ही उमन ला परीक्षा केंद्र के अंदर जाए के अनुमति दे जाहे। ये परीक्षा पर रायपुर जिला में 22 ठन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा ला लेके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करे गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिन्हा परीक्षा केंद्र ले 5 मीटर के दायरा में ध्वनि प्रदूषण और कोनो भी प्रकार के अव्यवस्था ला रोके के निर्देश दे हैं। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के मौका मा आज अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र मा वॉकथन के आयोजन करेगी, जेमा आकाशवाणी परिवार के सदस्य मन के संगे संग जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी और आने आने सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मन शामिल हुए। वॉकथन आज बिहनिया आकाशवाणी केंद्र ले शुरू होके आने आने रद्दा ले होवत लहुटत आकाशवाणी केंद्र मा सिरेस। ये मौका में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंझा कहिन की रेडियो आज भी समाज के हरेक वर्ग तक पहुंचने वाला प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के आखिरी में आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम प्रमेंद्र कुमार के अपन संबोधन में आकाशवाणी के 90 बच्छर के ऐतिहासिक और अनवरत यात्रा ला सुरता करें। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले राजधानी में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करेगी। दो सत्र में हुए ये कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान हां सुगम संगीत पेश करें। उन्हें श्वेता शिवाले डहाले उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देगी। दोनों ही गायन मन अपन मनमोहक प्रस्तुति ले दर्शक मल्ला मंत्रमुग्ध कर दें। ये अवसर में बड़ संख्या में संगीत प्रेमी मन उपस्थित रहें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित करेंगे है। एकर बर 1 से 18 आयु वर्ग के लेका मन आवेदन कर सकत है। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम ले ऑनलाइन स्वीकार करे जाहे। छत्तीसगढ़ शासन हा प्रदेश के प्रतिभाशाली लेका मन ला ज्यादा ले ज्यादा संख्या में आवेदन करे के अपील करे है। दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा बल आज बारसूर थाना क्षेत्र में माओवादी मंडहार ले लुका के रखे 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर IED बरामद करीन। जिला मौका में ही निष्क्रिय कर देगे है। मिले जानकारी के अनुसार जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बल के टीम हिड़पाल गांव के पहाड़ी और घना जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकले रहीन। इस दौरान ये IED बरामद करेगी। अब पेशे मौसम के हाल। प्रदेश में ए बखत भारी गर्मी पड़त है, जेखर ले जनजीवन प्रभावित होवत है। मौसम विभाग अवैया 48 घंटा के दौरान रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव महासमुंद समेत प्रदेश के 18 जिला मन में एक दो जगह में लू चले की संभावना जताये है। ये दौरान गर्म हवा चले और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे की संभावना है। यही बीच विशेषज्ञ मन लू ले बाची पर सावधानी बरते की अपील करे है। विशेषज्ञ मन पानी और तरल पदार्थ के सेवन करें, हल्का रंग के सूती कपड़ा पहने और पूरा शरीर ढक के राखे के सलाह दे है। संगे संग बिना कारण बाहर झन जाए के अपील घरों करे है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौका में बिलासपुर जिला के कोपरा रिजर्वायर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन लले के जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज 19वां रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले चुने हुए 51,000 ले ज्यादा युवा मल्ला बाटी नियुक्ति पत्र। पेट्रोल और डीजल के दाम एक फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 89 पैसा और डीजल 96 पैसा महंगा हो गए है। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा काली 24 मई के आयोजित करे जाहे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत

0: घर तक गीत सुन रहे थे। संगीत था अन्न मलिक का,
1: कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स।

0: सुर में अभी अभी गीत सुन रहे थे जिसे हमने लिया था फिल्म द जेंटलमैन से। गीत लिखा था इंदिवर ने, संगीत था अनु मलिक का।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: संगीत

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के सुर में भी फिल्म दीवाना का गीत सुन रहे थे। संगीत था नदीम श्रवण का।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
1: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 तोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
5: श्रोता आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: हम से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। शाम के 6:45 होने को है। कुछ प्रादेशिक समाचार।
6: पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: घर सूर्य घर।
10: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
11: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
10: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
11: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
10: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
11: क्यों?
10: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
12: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
13: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
14: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
13: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
14: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
13: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
14: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
12: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
15: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
14: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
16: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
14: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
16: आकाशवाणी से।
17: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
14: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
16: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
14: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
17: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
18: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने रोजगार मेले के तहत आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 257 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई। और प्रदेश में आज सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान 18 जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चुने हुए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। रोजगार मेला आज देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। रायपुर में यह आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि आज 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि यह केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि भारत को विकसित बनाने की एक जिम्मेदारी है।
2: देश में लगभग 51,000 युवाओं को शासकीय नौकरियों में आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में 257 कैंडिडेट्स को फिजिकली तथा कुल 803 कैंडिडेट्स को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें रेलवे के 200, डाक विभाग के 54, वित्त विभाग के 11, स्वास्थ्य विभाग के 7 एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 कैंडिडेट को इस मंच से स्वीकृति पत्रक दिए गए।
0: इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा नवा रायपुर में पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी ने की। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि पैक्स समितियों को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 96 पैसे महंगा हुआ है। रायपुर में अब पेट्रोल 105 रूपए 36 पैसे और डीजल 98 रूपए 47 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इस बीच राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई जा रही है। आज विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इन मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कड़ी में मुंगेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया। साथ ही 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने शंकरनगर खमारडी कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा कल 24 मई को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 तक होगी। दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र का द्वार बंद कर दिया जाएगा। इस बार परीक्षार्थियों को फेस स्कैन सिस्टम से गुजरना होगा। चेहरा मैच होने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आज अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी परिवार के सदस्यों के साथ ही जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वॉकथन आज सुबह आकाशवाणी केंद्र से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस आकाशवाणी केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि रेडियो आज भी समाज के हर वर्ग तक पहुंच रखने वाला प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम प्रमेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में आकाशवाणी की 90 वर्षों की ऐतिहासिक और अनवरत यात्रा का स्मरण किया।
3: की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने एक वाकाथन का आयोजन किया था और इसमें हमारे सभी साथियों ने, सभी श्रोताओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये 90 वर्ष की जो यात्रा है, ये आकाशवाणी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत के साहित्य को, लोक कला को, लोक साहित्य को सहेजने और संवारने का काम किया है।
0: वहीं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा राजधानी में कल स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया गया। दो सत्रों में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री मदन चौहान ने सुगम संगीत पेश किया। वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। दोनों ही गायकों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। रायपुर के आकाशवाणी केंद्र द्वारा स्वरोत्सव के इस संगीतमय आयोजन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:00 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने अपने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से लेकर प्रमुख अभियंता तक सभी को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज बारसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी को बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों की टीम हिड़पाल गांव की पहाड़ी और घने जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, इसी दौरान ये आईईडी बरामद किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। इस दौरान गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजनांदगांव आज सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग में 45 डिग्री सेल्सियस और रायपुर, माना तथा बिलासपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस बीच विशेषज्ञों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के कोपरा रिजर्वायर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले में 29 दिन पहले हुए करही गोलीकांड के सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्तौल बरामद की है और बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 257 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा के तहत अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई और प्रदेश में आज सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान 18 जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: गीत

0: राहत फतेह अली खान के सुर में अभी अपनी फिल्म दबंग 2 का गीत सुना। इसमें स्वर था राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल का। गीत लिखा था समीर ने, संगीत था साजिद वाजिद का।
1: आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर सभी श्रोताओं को नीरज निर्मल कर बिलासपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आकाशवाणी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आजादी के पूर्व से ही स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में अपनी भूमिका का बखूबी से योगदान दिया है और आजादी के बाद से संगीत साहित्य और कला के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इसकी भूमिका सराहनीय रही है। आकाशवाणी से प्रसारित विविध कार्यक्रम न सिर्फ हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं बल्कि हमें हृदय से आनंदित भी करते हैं। आकाशवाणी से प्रसारित सदाबहार गीत भला कौन सुनना नहीं चाहते। मुझे भी सदाबहार गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ आकाशवाणी सदैव सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से युक्त कार्यक्रम प्रसारित करता रहे। अंतिम में सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई

शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अक्षय भोसले आदित्य और ऋषि के स्वर में अभी अपने फिल्म तवल का गीत सुना। अक्षय ने भगवान ने रूप संपन्न होता है शब्द के साथ बचकर 20 मिनट हुए हैं।

किसान वाणी सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहने लैका सियान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। और संगवारी हो आप मन जानते छवा गर्मी के मौसम चला थे कहा तो गर्मी के मौसम में लू लगे के अभी संभावना चला थे कहा लू लग जाते तो ऐसे में हमला लू से बच के रहना है। और लू से बचे बर सबले पहले तो हमार खान पान में बदलाव करना है, शरीर ला ठंडा रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, प्यास नहीं लगे तब भी हमला थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है कहा। और हमारे जितकी भी पारंपरिक पेय पदार्थ है ओकर भी हमला सेवन करना है, जैसे घर से निकलने के पहले दिन भर में नींबू पानी या फिर छाछ मट्ठा नारियल पानी या गन्ना का रस है ओला हमला जरूर पीना है। और संगे संग प्याज के भी इस्तेमाल करना है, कच्चा प्याज के सेवन लू ले बचे में बहुत मददगार होते संगवारी हो। घर ले निकलते समय जेब में हमला एक छोटे से कच्चा प्याज रखना अच्छा माना जाते है। हमारे हर ग्रामीण इलाका में एक बहुत ही बेहद लोकप्रिय पुराना नुस्खा हवे। और बाहर निकलते समय हमला सावधानी भी अपनाना है, सही कपड़ा के चुनाव करना है, हमेशा हल्का रंग के ढीला ढाला सूती कपड़ा पहनना है। और धूप से बचाव के जो साधन है ओला हमला अपनाना है, जैसे अपन के सिर और चेहरा ला ढके बर गमछा टोपी या दुपट्टा से हमला अच्छा तरह से ढक करके निकलना है। और धूप के चश्मा ला हमला लगा के निकलना है कहा। और खाली पेट हमला बाहर नहीं निकलना है, कभी भी कड़कती धूप में खाली पेट घर से हमला बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ न कुछ खा करके और पानी पी करके ही हमला बाहर जाना चाहिए कहा। और खास करके संगवारी हो हमला दोपहर के समय बाहर निकले ले बचना है, जब कभू एकदम जरूरी काम है तो हमला बाहर निकलना है, और जैसे जरूरी काम नहीं है तो हमला दोपहर के समय घर में ही रहना है। तो ये तो है संगवारी हो लू ले बचे के उपाय। अब हमन हमर कार्यक्रम कोती आवो तो आज के बाद के विषय हवे संगवारी हो सब्जियों में जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग में रखें प्रतीक्षा अवधि का ध्यान। देखा संगवारी हो सब्जी में हमन नाना प्रकार के जहरीला कीटनाशक के प्रयोग करथन तो अलग अलग कीटनाशक के प्रतीक्षा अवधि भी अलग अलग रही थे, तो हमन ला सब्जी के उपयोग करे के पहले ओकर प्रतीक्षा अवधि के ध्यान रखना है। अब प्रतीक्षा अवधि के मतलब

0: का हवे कहिया तो जब हमन अपन सब्जी के फसल में कोनो भी कीटनाशक या जहर वाला दवाई के छिड़काव करथन तो वो दवाई के असर तुरंत खत्म नहीं होए कहा। दवाई छिड़के के बाद ले के वो दिन तक जब तक दवाई के असर पूरी तरह ले खत्म न हो जाए और सब्जी खाए बर सुरक्षित न हो जाए वो बीच के समय ला हमन प्रतीक्षा अवधि कथन कहा। अगर हमन बिना प्रतीक्षा अवधि पूरा करे सब्जी ला बाजार में बेच देबो या फिर घर में खा लेबो तो वो जहर हर हमर और मनखे मन के पेट में जाके कतको किस्म के गंभीर बीमारी पैदा कर सकत है। तो संगी हो सब्जी में दवाई छिड़के के बाद कतका दिन रुकना चाहिए तो अलग अलग सब्जी पर अलग अलग प्रतीक्षा अवधि रही थे। जैसे कि नार वाला या बेल वाला सब्जी है तो रोई है लौकी है करेला है कुंदरू है बरबट्टी है ये मन में कीटनाशक छिड़के के बाद कम से कम 5-7 दिन तक तुड़ाई नहीं करना चाहिए। संगी हो ध्यान देवा ये सब्जी मन बहुत जल्दी बढ़ते ओकर चक्कर में बिना दिन पूरा करे हमला एला नहीं तोड़ना है। ये जो नार वाला सब्जी है बहुत जल्दी बढ़ जाते कहा और जैसे भाव रहते तो हमन तोड़ देथन और बेच देथन तो संगवारी हो ऐसे नहीं करना है। ओकर प्रतीक्षा अवधि के हमला ध्यान रखना है ओकर बाद ही तुड़ाई करना है। और भाटा और टमाटर में देखबो तो भाटा और टमाटर में कीड़ा मन के प्रकोप बहुत ज्यादा होते कहा जेकर बर कड़ा दवाई डाले जाते। दवाई छिड़के के बाद कम से कम 7-10 दिन तक प्रतीक्षा हमला जरूर करना है। और भाजी और गोभी वर्ग में का करना है जैसे मुनगा है चौलाई भाजी है बंधा गोभी है फूल गोभी है ये सबों में हम का करथन पत्ता ला हमन सीधा खा लेथन एमा दवाई के असर ज्यादा दिन तक रथे संगवारी हो तो एमन में दवाई डाले के बाद 10-15 दिन तक तुड़ाई बिल्कुल हमला नहीं करना चाहिए। ऐसे ही संगवारी हो किसान भाई मन बर हमन एक सावधानी बताना चाहबो कि डब्बा के निशान ला उमन ला देखना है। कीटनाशक के डब्बा में एक त्रिकोण के निशान बने रहे थे अगर उमा लाल या पीला रंग है तो ओहर बहुत ज्यादा जहरीला है। ओका छिड़काव के बाद कम से कम 10-12 दिन तक सब्जी ला हमला हाथ ही नहीं लगाना है। और अगर नीला या हरा रंग के है तो ओहर कम जहरीला है फिर भी से हमला 3-5 दिन के समय उमें देना है। 3-5 दिन के बाद ही हमन ओला तोड़ सकत हन। और देखा हमार संगवारी मन अच्छा उपज पाए बर कीड़ा मकोड़ा ले बचे बर अंधाधुंध छिड़काव करते हैं तो एला हमला बंद करना है। सब्जी तोड़े के 1-2 दिन पहले कभी भी हमला रासायनिक कीटनाशक ला नहीं डालना है। और संगी हमन कीटनाशक की जगह हमें नीम तेल के भी प्रयोग कर सकत हन अगर सब्जी तोड़े के समय आग से और उमे कीड़ा लग गए है तो रासायनिक जहर के जगह हमन नीम के तेल या फिर जैविक दवाई के छिड़काव कर सकत हन ओकर ले कोनो नुकसान नहीं हुए और हमला सब्जी ला हमेशा धो करके ही ओकर उपयोग करना है। बाजार ले जाए के पहली या फिर घर में खाए के पहली सब्जी मनला साफ पानी में 2-3 बार बढ़िया ले धो लेना चाहिए। अपन और उपभोक्ता मन के स्वास्थ्य पर प्रतीक्षा अवधि के पालन करना बहुत ही जरूरी है। संगी हो साग सब्जी ला अमृत रहन देवा ओला जहर झन बनावा जैसे हमन प्रतीक्षा अवधि के ध्यान रखबो तो ओहर अच्छा होही। तो आपो मन भी संगवारी हो सब्जी में जब भी जहरीला कीटनाशक के प्रयोग करत है तो ओकर प्रतीक्षा अवधि के जरूर ध्यान रखा। और संगवारी हो बेरा हो गिसना आज के कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के तो आज के प्रश्न हवे वृक्षारोपण ले का लाभ होते। संगवारी हो प्रश्न ला एक बार और सुन लेवा वृक्षारोपण ले का लाभ होते तो एकर उत्तर आप मन ला जरूर मिली हमन आगे चर्चा करबो एकर बारे में संगवारी हो। तो आप मन हमार कार्यक्रम ला पूरा अंत तक सुनत रह अंत तक बने रह। अब संगवारी हो बेरा हो गिसना आज के किसान के कोती जाए के तो आज के किसान के विषय हवे सिलाई कढ़ाई के संग डेयरी अपनाएं और आमदनी बढ़ाएं। विषय पर किशोरी चौधरी हमें ग्राम अमेरी विकास खंड बरम केला से मोर होही से बातचीत तो आवेला सुन लेबो। संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हवा आप मन के संगवारी सुमित्रा पटेल। और संगवारी हो, हमार कार्यक्रम में भेंटवार्ता के क्रम रहे थे, तो यही भेंटवार्ता के अंश में मैं भेंट कर रहा था एक ऐसे किसानिन बहनी ले जोन मन पशुपालन के कामला करते हैं और संगे संग सिलाई कढ़ाई के कामला भी करत है। तो बहनी आप मन ला मोर कोती ले राम राम, जय राम राम। तो आप मन के परिचय बता दीदी।
1: मोर नाम किशोरी चौधरी।
0: हाँ, अच्छा आप मन अमेरी क्या? हाँ, तो अभी आप मन का बुता काम कर रहा था?
1: अभी पशुपालन कर रहा था ना, घर में सिलाई कढ़ाई बुनाई भी कर था।
0: अच्छा, पशुपालन के साथ साथ सिलाई कढ़ाई के काम भी हो जाते थे। तो ये दोनों काम ला आप मन बहुत ही अच्छा से समय निकाल के कर डाला था, है ना? तो जैसे पशु आप मन पालन कर रहा था तो के ठी राखे है? गाय
1: दो ठन है, एक ठा गाय गोरस देते, एक ठा बाछी।
0: अच्छा, एक ठन बाछी है, एक ठन
1: गाभिन है।
0: गाभिन है, अच्छा। तो एक ठी गाय गोरस दे थे तो कतका हो जाते?
1: दिन में आए 7-8 लीटर दे थे।
0: अच्छा, 8-10 लीटर। हाँ, हाँ, तो बहुत ही अच्छा बात है। और जैसे मंगला खवा पिया बर कैसे खवा था पिया था?
1: गाय डारे है ना, तिला 3 बार खवा था, बिहाने बेला के और
0: सांझ के। हाँ, बिहाने बेला के। हाँ, और सांझ के। हाँ, अच्छा, 3 बार खिला था। हाँ, तो इन्हें का खिला था आपने?
1: ओ मला रफी कोढ़ा चूरो के दाना संग में खला खवा था।
0: अच्छा, दाना भी खिला था।
1: हाँ,
0: और रफी भी।
1: हाँ,
0: और कोढ़ा भी।
1: हाँ,
0: अच्छा। तो जैसे सुबह खिला था तो दूध निकाले के पहले? हाँ, खिला था कि दूध निकाले के बाद?
1: दूध निकाले के बाद खावा था।
0: अच्छा, दूध निकाले। हाँ, के बाद खिला। हाँ, था। अभी गर्मी के मौसम चला थे का? हाँ, है ना। तो ये मन बस खास विशेष ध्यान रखे बला थे। हाँ, मला गर्मी ले बचाए बर
1: दिन में 2 घा धोए बला थे।
0: अच्छा,
1: ओ मला पंखा चालू करके रखे बला थे।
0: अच्छा अच्छा, हाँ,
1: मन के पेहेज करके रखे बला थे।
0: अच्छा, और खिड़की विड़की ला खोले बला थे का? हाँ, है ना। हाँ, हवा पानी का। अच्छा, और धूप ले बचाए बर ऊपर में आप मन पैरा वगैरह छाए है? फिर ओकर बाद जैसे दूध हो जाते तो आप मन कहाँ में बिक्री करता?
1: गाँच में बिक्री करता, घर ले आके ले जाते।
0: गाँच में? अच्छा, घर में, घर ले आके ले जाते।
1: ले आते ना भाई भर दूध वाला।
0: अच्छा अच्छा, उस लगे था। हाँ, तो लगभग आप मन ला आप मन के दूध के आप मन के जो पैसा है और कत का बन जाते?
1: 40 रुपया लीटर में बनते।
0: अच्छा,
1: लीटर हिसाब आप पैसा बनते।
0: अच्छा,
1: 40 रुपया भाव में देथन।
0: हाँ, तो ये जो खवाय पियाला बतात रहा। हाँ, कि ये कोढ़ा भूसा रफी दाना खिला था, एक अलावा आप मन घास फूस बंद कचरा भी खिला था?
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: पेरा कुटी और बंद कचरा सब भी लू लुई के देथन खिला था।
0: अच्छा, आप मन बन भी लगा है?
1: हाँ,
0: है ना।
1: हाँ,
0: हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। तो ये पशु मन जैसे बीमार पड़ जाते है ना, तो एक बार आप मन का कर था?
1: बीमार पड़ जाते तो डॉक्टर बुला थन, इलाज कर थन।
0: अच्छा, तो आप मन डॉक्टर बुला के का इलाज?
1: हाँ,
0: करवा लेता।
1: हाँ,
0: हाँ। और एक संगे संग आप मन बता था कि सिलाई कढ़ाई के काम? हाँ, भी कर दा था।
1: सिलाई कढ़ाई भी काम कर थन, अच्छा चलते।
0: अच्छा अच्छा चलते। हाँ, तो आप मन कैसे समय निकाल रहा था ये सिलाई कढ़ाई का?
1: रंधाई कुटाई लड़का मन स्कूल जाते हैं, ताहले काम बुता नहीं रहे, ताहा सिलाई करता, सिलाई के संग संग में गरवा मन के भी देख रेख करता।
0: अच्छा, हाँ, मतलब आप मन समय निकाल रहा था,
1: निकाल रहा
0: लोग लड़का मन स्कूल जाते हैं तो रान कुट के सिल रहा था, है ना, और गरवा मन के भी 3 बार देख रेख करता, है ना। हाँ, तो दीदी जैसे सिलाई कर था तो एमें कैसे कैसे मतलब का सिल था?
1: ब्लाउज सिल था।
0: हाँ,
1: बस ब्लाउज सिल था ना, बैग सिल था, स्कूल।
0: अच्छा,
1: बैग।
0: हाँ,
1: कपड़ा धरे के बैग, लेडीज पर्स।
0: अच्छा सब प्रकार के बैग सिलदार था और ब्लाउज सिल था। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा बात है। और दीदी आप मन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, समय के सदुपयोग कर रहा था और सिलाई कढ़ाई के संग संग घर के बूता काम ला निपटा के पशुपालन के काम ला भी कर डाला था। तो दीदी बहुत ही अच्छा जानकारी दे था हमारे संगवारी मल्ला। और आखिर में जोन भी हमारे

खेती के संगे संग पशुपालन के काम ला भी करत हे, डेयरी व्यवसाय ला करत हे कहा, और बहुत ही अच्छा से अपन के घर परिवार ला चलात हे। और संगवारी हो, आज के नसीहत के विषय हवे भविष्य की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण। देखा संगवारी हो, भविष्य ला संवारे बर और हमर पर्यावरण के संतुलन ला बचाए बर वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी हवे। आज जोन अभी अड़बड़ घाम करत है, बहुत ज़्यादा घाम करत है और बेमौसम पानी गिरत है, ओकर ले बचे के एकमात्र उपाय हवे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ये सब का होते संगवारी हो, काबर की अभी बहुत ही कम होगी से हमार पेड़ मन के संख्या मन पेड़ ला दिन के दिन काटत जाते हैं, तो ओकरे सेती जो हमार पर्यावरण है वह बिगड़ गई से बेमौसम पानी गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा घाम भी करते हैं। और संगी हो, वृक्षारोपण हमार भविष्य और पर्यावरण पर कतका जरूरी हवे, तो एहर भविष्य के सुख समृद्धि पर आर्थिक लाभ पर बहुत ही जरूरी हवे। कमाई के यह साधन हवे, अगर हमन अपन खेत के मेड़ मा या फिर खाली जगह मा फलदार पेड़ जैसे कि आम है, मुनगा है, जाम है, कटहल है या फिर इमारती लकड़ी है जैसे सागौन है, बांस है, ये सबो ला लगाबो तो आने वाला समय में ए मन ले हमला बने अतिरिक्त कमाई हो जाही कह, बने आमदनी मिल जाही। तो ये पेड़ लगा ले हर कमाई के साधन भी है और हर हमर जीवन भर जरूरी भी हवे और पर्यावरण के संतुलन भर भी जरूरी है कह, और ये हर आने वाले पीढ़ी भर उपहार भी हवे संगवारी हो। आज जोन पेड़ ला हमन लगाबो ओकर फल और छाया हमन लइका पीला मन ला मिल ही कह, तो ओहर उमन बर उपहार भी है कह और उमन के भविष्य हर सुरक्षित भी रही कह, ओकरे सेती हमला वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी हवे। और संगे संग पर्यावरण के संतुलन बर भी वृक्षारोपण करना है। का होते संगवारी हो, पेड़ पौधा रहे ले हमन शुद्ध ऑक्सीजन भी ले सकत हन। आप मन तो जानते छव कि पेड़ पौधा मन हमला सांस लेहे बर साफ हवा ऑक्सीजन देते और जहरीला गैस ला सोखते, यानी कि वो हमला ऑक्सीजन देते सांस लेहे बर और हमन जोन छोड़थन कार्बन डाइऑक्साइड ला ओला ओमन ग्रहण करते, तो ओकरे सेती संगवारी हो हमला पेड़ पौधा लगाना है। और देखा आजकल गर्मी जब भी आते तो पानी के किल्लत हर जगह देखे बर मिलते, तो ये सब सिर्फ पेड़ पौधा के कमी के कारण होते, तो हमला पेड़ ला काटना नहीं है, पेड़ ला बल्कि लगाना है। पेड़ के जड़ मन का होते संगवारी हो, पानी ला जमीन के भीतर सोख के रखते, जेकर ले कुआं बोर और तालाब मन के जल स्तर हर ऊंचा बने रहते और गर्मी में पानी के किल्लत नहीं होए कहा, तो ओकरे सेती हमला पेड़ लगाना है और ये जो पानी के किल्लत है ओकर ले बचना है। और पानी के एकर से जतन भी होते अभी हमन बतायन कहा। और धरती के हरियाली और मौसम पर भी जरूरी हवे पेड़ लगाना, जतका ज़्यादा पेड़ रही संगवारी हो मौसम उतका ज़्यादा सुघर रही, अच्छा रही, सही समय में पानी गिरी और गर्मी के तापमान घलो कम रही। आप मन देखत हो कि रास्ता में आज जात जहाँ पेड़ पौधा रहते वहाँ गर्मी कम रहते है ना, और ओकर से हमला अच्छा से छाया भी मिलते, ओकर से फल फूल पौधा जो भी बहुत प्रकार के चीज़ मिलते कहा, तो ओकरे सेती हमला पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी हवे। तो संगवारी हो, कहा जाते कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होते, यानी कि एक ठन पेड़ के जतन करना 100 लइका मन के देखभाल करे जतका पुण्य के काम आए, पुण्य के काम आए संगवारी हो, तो ओकरे सेती हमला पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी हवे। संगी हो, हमला अपन यहाँ के माटी और जलवायु के हिसाब ले पेड़ ला चुनना पड़ी। जैसे फलदार पेड़ में आम है, इमली, मुनगा, सीताफल, जामुन और अमरूद। छायादार और पवित्र पेड़ में माना जाते पीपल, बरगद, नीम और करंज। और ऐसे ही औषधीय और इमारती पेड़ हवे आंवला, बेहरा, हर्रा, बांस और सागौन। तो संगी हो, हमला अपन जन्मदिन या फिर लइका मन के जन्मदिन या फिर कोनो सुघर तिहार पर्व के

एक पेड़ जरूर लगाना है और सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है संगवारी हो, जब तक ओहर बड़े नहीं हो जाए तब तक हमलाओं में पानी देना है, ओकर देख रेख करना है, ओकर सुरक्षा करना है, ओकर जोन भी मवेशी है पशु है ओमन से हमला बचा के रखना है, ये हर हमार जिम्मेदारी हवे। और पेड़ पेड़ से सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि पूरा समाज ला सबो ला लाभ मिलते, तो ओकरे से ती संगवारी हो भविष्य की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन पर हमला वृक्षारोपण जरूर करना है। तो संगवारी हो गोट बात तो होते ही कहा, आवा सुन लो एक ठन सुघर अकन के लोकगीत ला।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें सुघर अकन के लोकगीत ला, आप मन ला बढ़िया लागे हो ही। कैसे लागिस होही आप मन जरूर बता संगवारी हो, ईमेल या पत्र के माध्यम ले। और एक गीत ला गाय रहीन है गरिमा दिवाकर और अमन के साथी मन। और संगवारी हो, आज के टिप के विषय हवे लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और कृषि सखी से महिला सशक्तिकरण। देखा संगवारी हो, महिला मन ला आत्मनिर्भर और मजबूत बनाए बर सरकार डाहर ले अब्बड़ सुघर सुघर योजना मन ला चलाए जात हे, जोन में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी योजना मन आज के समय मा महिला सशक्तिकरण के सबले बड़े मिसाल बनत जात हैं। कहा तो संगी हो, आवा समझबो जानबो कि ये योजना मन का हमें। तो सबले पहली जानबो लखपति दीदी योजना। तो संगी हो, ये योजना के लक्ष्य ये हवे कि गांव के बहनी मन के सालाना आय या फिर कमाई कम से कम 1,00,000 रुपया होए। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार के एक ठन महत्वपूर्ण योजना हवे, जेकर उद्देश्य स्व सहायता समूह ले जुड़ी महिला मन ला वित्तीय रूप से मजबूत बनाना हवे। और बजट 2026-27 में लखपति दीदी योजना ला विस्तार देहे के ऐलान भी किया गया हवे। ये योजना के तहत महिला मन ला केवल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि ओमन के प्रोडक्ट बर स्टोर भी खोला जाही। ये योजना के शुरुआत संगवारी हो भारत सरकार डहाल ने 2023 में किया गया रही से। और लखपति दीदी योजना के तहत महिला मन ला कौनो भी स्व सहायता समूह ले जोड़ा जाते, जोन में उमन ला सिलाई और खेती के आधुनिक तरीका जैसे पारंपरिक काम के साथ साथ एलईडी बल्ब बनाना, ड्रोन उड़ाना और डिजिटल बैंकिंग जैसे आधुनिक काम के ट्रेनिंग भी दिया जाते। साथ ही महिला मन ला अपन बिजनेस शुरू करे बर लोन भी दिया जाते संगवारी हो। सरकार उमन ला 1 से 5 लाख तक के लोन भी देते और एमा कम ब्याज भी लागते, कभी कभी तो इसमें ब्याज ही नहीं लागे। तो महिला मन के डहार ले बनाए गए जोन भी प्रोडक्ट है ओला बेचे बर आउटलेट और ई कॉमर्स ले जोड़ा जाते। एकर से महिला आत्मनिर्भर, समझदार और आर्थिक रूप ले सशक्त बनते। लखपति दीदी योजना के तहत करीब 2 करोड़ महिला मन लखपति बन चुकी न संगवारी हो। और ये जो ड्रोन दीदी है, ये ड्रोन दीदी योजना में ड्रोन दीदी वहीच मन बनते जोन मन स्व सहायता समूह ले जुड़े रहते और एमन ला ड्रोन चलाए बर ट्रेनिंग दिया जाते, फिर एमन चलाए बर सीख जाते और ड्रोन दीदी के नाम ले जाना जाते। कहा और ड्रोन दीदी मन सशक्त होवत जाते संगवारी हो। ऐसे ही कृषि सखी भी होते हैं, ए मन भी ट्रेनिंग ले रहते हैं और गांव-गांव में किसान संगी संगवारी मल्ला जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देते हैं, खेती करे के आधुनिक तरीका मन के बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही संगवारी हो, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और कृषि सखी ले हमार महिला मन सशक्त हो जाते हैं, उमन के विकास हो जाते हैं, उमन के आमदनी में बढ़ोतरी भी हो जाते हैं। तो संगवारी हो, आप मन भी ये योजना के लाभ उठावा और एक बार फिर सुन लेबो सुघर अकन के लोकगीत ला।

0: माटी के सांस लौटा ही हरी खाद, अंधाधुंध रासायनिक खाद ले थक चुके हैं जमीन, इला करना है फिर ले जिंदा। हरी खाद माटी के संरचना ला सुधारते, नमी ला बनाए रखते, पैदावार ला 20% तक बढ़ाते, सस्ता सरल और टिकाऊ खेती के आधार हरी खाद। आज ही शुरुआत करो हरी खाद पर, बीज मा ढेचा सनई मूंग जैसे बीज के उपयोग करा और धान के फसल लेहे के पहली एकर बुआई जरूर करो। ज्यादा जानकारी पर अपन के लखठा के स्थानीय कृषि कार्यालय ले संपर्क करो।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमें सुने संदेश कहा और संदेश के पहली सुनत रहे हैं सुघर अकन के लोकगीतला जिला गाय रही है भैया लाल हेडाऊ अवन के साथी मन। तो आवा संगवारी हो फिर सुन लेबो ये संदेश ला।
0: किसान भाई मन, का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता, तो आज ही अपनावा हरी खाद। ढेचा सनई लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते, जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ते, कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।

0: है तो टेलीलॉग ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो संगवारी वो हमर आओ भी चर्चा के विषय है कहा प्रसूति फिस्टूला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो संगवारी हो प्रसूति फिस्टूला ला खत्म करे बर हर बछर 23 मई के यानी कि आज ही के दिन ला प्रसूति फिस्टूला उन्मूलन बर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते। तो संगवारी हो प्रसूति फिस्टूला का होते जब कोनो महिला ला लइका या प्रसव होय के बखत लंबा समय तक और अगात पीड़ा होते और ओला सही समय में डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाते तो जो माँ के शरीर के भीतरी अंग है जैसे पेशाब या टट्टी के थैली और जोन भी जनन अंग है ओकर बीच में एक ठन अनचाहा छेद या रास्ता बन जाते। एकर से महिला के शरीर ले पेशाब या टट्टी हमेशा चुहत रहे थे। तो यही लग कही थे प्रसूति फिस्टूला। तो एकर जब भी आप मतलब हो के लक्षण दिखत है तो आप मन जरूर डॉक्टर से संपर्क करो और सुरक्षित रहो। तो संगवारी हो मुझ जाए के मिला हो थे तो मोला देवा बिदा आप सब झनला राम राम जय जोहार।
2: किसान भैया भी अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को है। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव समारोह की रेडियो रिपोर्ट।
3: आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी रायपुर द्वारा 22 मई को विमतारा ऑडिटोरियम रायपुर में स्वरोत्सव का आयोजन किया गया।
4: वंदे मातरम। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित संगीत सभा स्वरोत्सव में पधारे सभी देवियों और सज्जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिसकी धुन से होती है सबकी सुबह सुहानी, जिसकी धुन से होती है सबकी सुबह सुहानी, घर घर पहुंच रही है जन जन की कहानी, गांव से शहरों तक धरती से लहरों तक, गांव से शहरों तक धरती से लहरों तक, 9 दशकों से गूंज रही है अपनी आकाशवाणी, अपनी आकाशवाणी।
3: कार्यक्रम के आरंभ में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वी राजेश्वर ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया।
5: सम्माननीय पद्मश्री श्री मदन चौहान और उनकी प्रतिष्ठित कलाकार टीम, सम्माननीय श्रीमती श्वेता शिवाले और उनकी उत्कृष्ट समूह, दूरदर्शन, PIB, CBC, आकाशवाणी और जिला प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण, पूज्य आकाशवाणी वरिष्ठ सदस्य, सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक, जीवंत युवा, संगीत प्रेमी, मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, मुझे आप सभी का स्वरोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। जो भारत में रेडियो प्रसारण की 90वीं वर्षगांठ का भव्य उत्सव है। आवाज़ों, धुनों और यादों के 9 दशकों का क्या शानदार यात्रा रही है। भारत में रेडियो प्रसारण स्वतंत्र संग्राम के दौरान यहाँ एक शक्तिशाली एकता और साहस का उपकरण बन गया। इसने नेताओं की आवाज़ों पहुँचाई, लाखों लोगों को प्रेरित किया और हमारे राष्ट्र की सामूहिक भावना को मजबूत किया। आज रात जब हम उसे गौरवशाली अध्याय को याद करते हैं, स्वतंत्र के बाद रेडियो लोगों को विश्वसनीय साथी बन गया। उसने किसानों के शिक्षित किया, समुदायों का मार्गदर्शन किया, स्वास्थ्य में जागरूकता फैलाई और सरकार की दृष्टि को देश के सबसे दूरदराज कोनों तक पहुंचाया। वास्तव में रेडियो हमारे राष्ट्र के प्रगति और विकास की आवाज़ रही है। आइए हम इस अद्वितीय योगदान की तालियों से सराहना करें। आकाशवाणी भारतीय संगीत और संस्कृत को संरक्षित और प्रचारित करने के अपने मिशन में अडिग रही। संगीत अनुभाग स्थापित करके प्रतिष्ठित कलाकारों को भर्ती करके और संगीत समारोह आयोजन करके आकाशवाणी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय संगीत की आत्मा फलित फुलित रहे। आज रात जब हम अपने माननीय अतिथि कलाकार पद्मश्री मदन चौहान और श्रीमती स्वाति शिवाले का स्वागत करते हैं, आइए हम उन्हें इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से सम्मानित करें। आकाशवाणी रायपुर क्लस्टर की ओर से मैं हमारे सम्माननीय अतिथि कलाकारों, वरिष्ठ अधिकारियों, पूज्य वरिष्ठ और यहाँ उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस संध्या की दिव्य सुरों में डूब जाएं और भारत में रेडियो की सदगत यात्रा का उत्साह मनाए। धन्यवाद।
3: इस सुरमई सांझ में सबसे पहले श्रीमती श्वेता शिवालय ने ठुमरी, दादरा और मिर्जापुरी कजरी की ऐसी तान छेड़ी कि संगीत प्रेमी झूम उठे।

श्वेता शिवाले जी के स्वर में। आइए अब सुनते हैं सावनी की ऐसी ही एक वानगी। बोल हैं तुमको आने में, तुमको बुलाने में।

मिर्जापुर की कचरी उत्तर भारत की अत्यंत लोकप्रिय लोक गायन शैली है, जो विशेष रूप से वर्षा ऋतु में गाई जाती है। इसमें मेघ, झूला, नदियाँ और गांव के वर्णन के साथ प्रेम और विरह की भावनाएं बड़ी मार्मिकता से व्यक्त होती हैं। श्वेता शिवाले जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक मिर्जापुरी कजरी, जिसके बोल हैं सेजिया पे लोटे काला नाग।

स्वरोत्सव के दूसरे चरण में पद्मश्री मदन चौहान ने अपने सधे हुए सुर में गजल गायकी, सूफियाना कलाम और कबीर भजन की सांगीतिक प्रस्तुतियां दी।

मदन चौहान जी की आवाज़ में अब पेश है नातिक लखनवी की गज़ल, बुझी हुई शमा का धुआं हूँ और अपने मरकज़ को जा रहा हूँ कि दिल की हस्ती तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ।

0: स्वरोत्सव की ये सुरमई सांझ जवां होती रात तक जारी रही, जिसका संगीत रसिकों ने खूब लुत्फ उठाया। इस संगीत सभा के समापन अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख उपनिदेशक श्री पंकज मेश्राम ने आभार व्यक्त किया।
1: बैठे हुए महफिल में हम ये सोच रहे हैं कि महफिल से उठा जाए तो क्या कह के उठा जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, बंदिशें होती हैं। आज के इस खास सौरोत्सव कार्यक्रम में पधारे आप सभी रसिक श्रोताओं का हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज का ये विशेष आयोजन ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा की खुशनुमा याद में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य कलाकार थे पद्मश्री श्री मदन चौहान, श्रीमती श्वेता शिबाले और साथी। आपने अपनी दिलकश और अलहदा गायकी से आज की शाम को रोशनी से तरबतर कर दिया। आप सब की उपस्थिति के बगैर तय करना आसान नहीं था। आप सबने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम विशेष तौर पर आभारी हैं दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक श्री संजय मिश्रा और उनकी पूरी टीम का, जो इस आयोजन में हर समय हमारे साथ रही। हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं PIB से पधारे उप महानिदेशक श्री जय भाई सर का। हम आभार व्यक्त करते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा जी का, जिनका कीमती वक्त हमें इस आयोजन के लिए मिला। हम इस कार्यक्रम के मंच संचालक दीपक हटवार, रेणुका काले और सौम्या रिजवी का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में हमें विशेष सहयोग दिया। और अंत में हम आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और हमारे क्लस्टर प्रमुख श्री वी राजेश्वर सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके नेतृत्व में ये आयोजन अपने अंजाम तक पहुंचा है। उन्होंने हम सबको एक टीम की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित किया आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, और अपना कीमती और बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद।
0: इसी के साथ 22 मई को विमतारा ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित स्वरोत्सव पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं

0: विनोद राठौर और के अग्नि के स्वर में भी अपनी फिल्म बाजीगर का गीत सुना। गीत ने संगीत था अनु मलिक का। आकाशवाणी 890 में आप सुनते हैं रेडियो श्रोता डॉक्टर रविंद्र कुमार भगत की प्रतिक्रिया।
1: आकाशवाणी
2: 890। जय जोहार संगवारी हो, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार भगत, अतिथि शिक्षक कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र रायगढ़ ले बोला था। आज मैं बहुत गर्व और खुशी के संग आकाशवाणी के 90 बच्चर पूर्ण होए के अवसर में अपन विचार रखत हूँ। आकाशवाणी जिन हमन ऑल इंडिया रेडियो के नाम ले जानतन, सिर्फ रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि देश की आवाज है। 1936 में शुरू हुए ये सफर गल आज घनों लगातार चलत हवे और हर पीढ़ी ला जोड़त हवे। आकाशवाणी हर भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण घड़ी में अपन योगदान दे हवे, खास करके भारत स्वतंत्रता संग्राम के वक्त जब जानकारी के संसाधन बहुत कम रही, तब आकाशवाणी हर जन जन तक सच्ची खबर पहुँचाए और देशभक्ति के भावना ला जगाए। इस संस्था के सबसे बड़े ताकत थे कर पहुँच, शहर हो या गाँव, जंगल हो या पहाड़, हर जगह आकाशवाणी की आवाज गूंजे लगते। आज घलो कई गांव में रेडियो लोगन के जिंदगी के जरूरी हिस्सा है। आकाशवाणी है सिर्फ खबर नहीं बल्कि सिखाई और संस्कृति के माध्यम है। ये किसान मन बर खेती किसानी की जानकारी, छात्र मन बर शैक्षणिक कार्यक्रम और आम जनता बर मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत करत हवे। हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत बोली संस्कृति और परंपरा ला बढ़ावा देने में गलोक आकाशवाणी के बहुत बड़ा योगदान हुआ। कतको कलाकार मन अपन पहचान यही मंच ले बनाई। आज के आधुनिक डिजिटल जमाना में जब मोबाइल और इंटरनेट के दौर चलत हवे, तबो गलोक आकाशवाणी अपन महत्व बनाए रखे हवे। FM रेडियो, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्रसारण के जरिए ये नई पीढ़ी ला घलो जोड़त हवे। आकाशवाणी के ये 90 बच्छर के सफर हमें ला सिखाते कि सच्ची जानकारी, सेवा भावना और जनता ले जुड़ाव कभी पूरा नहीं हुए। अंत में मैं यही कहूँ कि आकाशवाणी हर देश के दिल की आवाज आए, जिन 90 बच्छर ले हमन संग जुड़े हवे और आगो घलोक ऐसने सेवा करत रहे। जोहार, धन्यवाद।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

मोहम्मद अजीज और साथ नासिर खान के सुर में अभी फिल्म को रहे थे। गीत लिखा था इन दीवारों पर फारूक कैसर ने, संगीत था राजेश रोशन का। इसका हमारे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 45 मिनट होने को है, कुछ समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित

0: 21वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं

0: शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाउ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे

श्रद्धा गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से, आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीत।

0: आप से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर 30 मिनट होने को हैं। अब हम प्रसारित करेंगे दयाल सभागार में आयोजित 19वें रोजगार मेले की रेडियो रिपोर्ट।
1: रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

0: रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल सभागार में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजन के मुख्य अतिथियों में माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद, अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात मंडल रेल प्रबंधक श्री पी दयानंद ने स्वागत उद्बोधन में कहा,
1: सर्वप्रथम आज के इस रोजगार मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तथा उन युवक युवतियों को हार्दिक बधाई जिन्हें आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि रोजगार मेले का यह 19वां आयोजन है तथा पूरे भारत वर्ष में कुल 47 स्थानों पर इसका आयोजन आज किया जा रहा है। इस मेले के तहत कुल 51,000 से भी अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे और आप सभी नव नियुक्तों को संबोधित करेंगे। रायपुर के कुल 803 युवाओं का चयन किया गया है। आज हम यहाँ पे कुल 257 नव नियुक्त उपस्थित हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात इनमें से कुल 25 नव नियुक्तों को स्टेज पर माननीय मंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अंत में सभी नव नियुक्तों को पुनः

0: मंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अंत में सभी नव नियुक्तों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।
1: इसके बाद माननीय जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सभागार में उपस्थित अभ्यर्थियों, मीडिया से संबंधित और आम जनों को संबोधित करते हुए बताया।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर के इस पावन पवित्र सभागृह में मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, युवा साथियों तथा गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज 23 मई 2026 को पूरे देश में 47 स्थानों पर भारत सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले के इस भव्य आयोजन में हजारों युवा साथी एकत्र हुए हैं। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि भारत के युवाओं की प्रतिभा, उनके सपनों और उनके उज्जवल भविष्य का यह पावन पवित्र उत्सव है। यह वह मंच है जो हमारे देश के युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के आधार पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। आज देश में 19वें रोजगार मेले के कार्यक्रम में देश भर में लगभग 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन संपन्न हो रहा है। आज देश में कुल 51,000 से अधिक तथा रायपुर के इस कार्यक्रम में भाग के 200, डाक विभाग के लगभग 34, वित्त विभाग के 11, स्वास्थ्य विभाग के 7 एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 कैंडिडेट्स को इस मंच से स्वीकृति पत्रक प्रदान किए जाएंगे। बेटा, आज के इस अवसर पर देश के यशस्वी और शुभंकर प्रधानमंत्री जी की ओर से ये पत्रक वितरित करने के लिए मैं आपके बीच में हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं आपको हृदय से खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में रोजगार मेले की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य था अगले कुछ वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लगभग 11 लाख से अधिक युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दर्शाती है कि हमारी सरकार ने मिशन मोड में कार्य करते हुए बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए। 26 अप्रैल 2025 को आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में 51,000 से अधिक युवाओं को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए गए। 24 जनवरी 2026 को आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में लगभग 61,000 से अधिक युवाओं को स्वीकृति पत्रक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा रोजगार मेलों के माध्यम से गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं को नियुक्त किया गया है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की आशाओं और सपनों की कहानियां हैं जिनके बच्चे आज आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो हर युवा को अवसर प्रदान करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण है। बच्चों, विकसित भारत 2047 की नींव हमारे युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और समर्पण पर टिकी है। रोजगार मेले का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी कि उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनका उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना है। रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को न केवल नौकरियां दी जा रही हैं, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। यह मेला युवाओं को आत्म सशक्तिकरण का अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। 13 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि भाषा कोई बाधा न बने। रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नए नियुक्त कर्मचारियों को कर्मयोगी प्रारंभ जैसे

0: ऑफलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 1400 से अधिक ई लर्निंग कोर्स उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में प्रगति के नए कीर्तिमान, नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों ने युवाओं को एक नई दिशा दी है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बच्चों, स्टार्टअप की संख्या 2014 के 100 से बढ़कर 1,00,000 से अधिक हो गई है, जिससे 10,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। मुद्रा योजना के तहत 23,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे 8-9 करोड़ लोग पहली बार उद्यमी बने। लखपति दीदी योजना ने 1.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिससे वे नौकरियों और स्वरोजगार के लिए तैयार हुए। युवा साथियों, आप इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा राष्ट्र है, जहां पर 65% युवा भारतवर्ष में निवास करते हैं। आज आपको जो अवसर मिल रहा है, यह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप इस अवसर पर का पूरा लाभ उठाएं, अपने कौशल को निखारें और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। रोजगार मेला भारत सरकार की उस सोच का प्रतीक है, जो युवाओं को सशक्त बनाकर देश को मजबूत बनाना चाहती है। यह मेला केवल नौकरियां प्रदान नहीं करता, बल्कि यह आशा, विश्वास और आत्मविश्वास का संदेश देता है। आज मैं सभी युवाओं को, सभी हमारी बेटियों को जो आज यहाँ इस रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, एक बार फिर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक बार खूब सारी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपना संक्षिप्त वक्तव्य यही विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।
1: तत्पश्चात माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने सभागार में उपस्थित अभ्यर्थियों और आमजनों को अपने उद्बोधन में कहा,
2: रोजगार मेला के तहत 51,000 नियुक्ति इस देश में दिए जाने हैं और सीधे नियुक्ति पत्र देने के लिए यह आयोजन किया गया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह 19वां आयोजन है। इस आयोजन में कुल 47 स्थानों पे आयोजन किया जा रहा है और इस मेले के तहत जो प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे और नव नियुक्तों को संबोधित करेंगे, यह हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से इस देश में उन्होंने देश की कमान प्रधानमंत्री के रूप में संभाली और लगातार इस देश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में उन्होंने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूं कि वो इस देश की युवाओं को रोजगार देकर उनके आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। रायपुर के कुल 803 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें रेलवे के कुल 724, डाक विभाग के 34, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के 28, स्वास्थ्य सेवाओं के 12 और हिंदुस्तान कापर लिमिटेड में 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो दिया जा रहा है। आज इस स्थल पर कुछ कुल 257 नवनियुक्त उपस्थित हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात इनमें से कुल 25 नवनियुक्तों को स्टेज पर माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं। और हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी जो यहां पहुंचे हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: इसके पश्चात माननीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली भारत के 47 स्थानों में 51,000 से ज़्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण और संबोधन किया गया।
0: साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें यहां पहुंचाने के लिए हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले,

रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरिटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं। हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता की। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। देश ने आप पर भरोसा किया, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ है। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा,

0: पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात सभागार में उपस्थित भारत सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों से हमने बात की और उन्होंने बताया।
2: आपका नाम और आप कहाँ से हैं?
3: मेरा नाम सनी कुमार है और मैं बिहार से हूँ। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से था, ग्रामीण डाक सेवक में यहाँ बस्तर डिवीजन में था मैं
2: जी।
3: तो इसी कारण से मैं यहीं फॉर्म डाला और यहीं पे मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रूप में।
2: कितनी तैयारियाँ की फिर आप, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे पद पर थे आप, और उसके बाद फिर ये?
3: मैम तैयारी तो 2021 से चल ही रही थी, तो 2023 में मैं JDS में सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद से मेरा लगभग 0.5 मार्क्स से किसी में 1 मार्क से रह जा रहा था, तो इसी कारण से इस कारण से डिले हुआ मैं, और आखिर में जा करके ये बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे लाइफ में भी आया मैं।
2: प्रधानमंत्री की जो पहल है रोजगार मेला आयोजित करके नियुक्ति पत्र प्रदान करना, ये आपको कैसा लगता है?
3: ये बहुत बढ़िया पहल है मैम, और जैसा कि ये 19वां रोजगार मेला था, तो जिसमें मोदी जी ने बोला है कि लोगों को ये रोजगार नहीं प्रदान करता है, एक आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्रोत बनता है मैम, तो ये सबसे बढ़िया पहल है मैम। यही संदेश, एक ही संदेश है कि जो जिस चीज की भी तैयारी आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हो, लगातार उसमें आप मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ जुड़े रहें, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे जिस फील्ड में भी हो।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी को।
4: नीरज कुमार सिंह,
5: आपको किस पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है?
4: असिस्टेंट लोको पायलट।
5: असिस्टेंट लोको पायलट जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
5: और आपने इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की?
4: मतलब 1 साल 1.5 साल तो अच्छे से मेहनत की, इसलिए मिला हुआ यह पोस्ट।
5: जैसे इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए कुछ बता सकते हैं युवाओं को कि किस तरह की मतलब विषय पढ़ने पड़ते हैं, किस लाइन पे जाना पड़ता है?
4: इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है, तो दोनों पे ध्यान देना पड़ता है।
5: बहुत बहुत बधाई आपको आपके पद प्राप्ति के लिए।
4: थैंक यू।
2: हेलो नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
6: सूरज विश्वकर्मा।
2: तो कौन से पद के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
6: जी मैं रायपुर डिवीजन में असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए नियुक्त हुआ हूँ।
2: असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ पहले आपको इस पद के लिए।
6: जी धन्यवाद।
2: और कितनी मेहनत की आपने, हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या तैयारियाँ की आपने?
6: तैयारी तो मैम करनी पड़ती है, इसमें बहुत अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, कम से कम 1 साल तो लगता है इसके पीछे।
2: जी। आज आपको इतना बड़ा मतलब पोस्ट मिल चुका है, तो हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
6: श्रोताओं को कहना चाहेंगे मेहनत करते रहिए, आपका भी समय आ जाएगा। मोदी जी ने अच्छा अभिवादन दिया सबको, खुश तो सभी हैं, परिवार वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, सभी खुश हैं।
7: मैं हेमंतपुरी गोस्वामी।
2: सर आप कहाँ से?
7: मैं दुर्ग से हूँ और मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है एज अ CSA।
2: जी सबसे पहले तो इस पद के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।
7: जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
2: और इस पद को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है सर?
7: मैं 2020 में से प्रिपरेशन शुरू किया था और 2025 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो लगभग 5 साल लगे मुझे। कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती थी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब अवसर से हम दूर हो जाते थे, बाकी अभी 2025 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी देखिए तो सभी को बहुत सारी खुशियाँ होती है, घर वाले भी काफ़ी खुश हैं कि जितना भी मेहनत करें बस दिल से करें, सिलेक्शन जरूर होता है। कभी कभी थोड़े से नेगेटिव्स वाले लाइफ आते हैं, बट लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
7: थैंक यू।
5: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
8: मेरा नाम देवाशीष मजुमदार।
5: जी देवाशीष जी, आपको कौन से पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
8: एज अ सी एस ए इन

0: बैंक ऑफ बड़ौदा।
1: अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
0: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: और आपने इस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की?
0: मैं लास्ट ईयर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ जून 2025 में, एंड मुझे एक साल लगा प्रिपेयर करने के लिए, ऑलमोस्ट 6 महीना प्रिपेयर करने के लिए लगा, एंड आज सिलेक्शन हुआ। मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है इस बात की।
1: और आप युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं?
0: हाँ, युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब आप हमेशा मेहनत करते रहिए, एंड जो भी एग्जाम्स हैं उसको अच्छे से दीजिए एंड क्लियर कीजिए, दैट्स इट।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई आपको आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। ठीक,
2: पुष्पांजलि ठाकुर।
1: पुष्पांजलि जी, आपको कौन से पद पर अब नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है?
2: मेरे को ABPM पोस्ट पर मिला है, मर्रा बीओ में।
1: इसमें किस तरह के कार्य होते हैं ABPM?
2: मुझे आर्टिकल मिलेगा, उसको गांव-गांव पहुंचाना होगा जहां मेरे आश्रित गांव हैं।
1: जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये पत्र प्राप्त करके?
2: बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, तो अभी जनवरी में फॉर्म आया था GDS का, तो मैं गूगल में सर्च की कि ये कौन सी पोस्ट है, क्या क्या होता है, और मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती थी, अपना खर्च खुद उठाना चाहती थी, तो ये पोस्ट में फॉर्म डाली, फिर मेरा फर्स्ट लिस्ट में आया नाम मर्रा बीओ में।
3: इस तरह आज 23 मई को रायपुर के पंडित दीनदयाल सभागार में 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण और रोजगार मेले समारोह का समापन हो गया।
4: रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित 19वें रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
5: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। संगीत

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में अभी अपने राही मासूम राजा के लिखी गजल सुनी। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से समाप्त सुन रहे विविध संगीत एक कव्वाली।

0: में आप सुन रहे विविध संगीत।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: 90।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: रामदास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है।

किशोर कुमार के सुर में अभी आपने नीरज के लिखा गीत सुना। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से समाप्त सुना है विविध संगीत।

0: बदवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बदवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बदवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले।

0: यादो कन्या
1: बैठी पनवड़ी यादो कन्या
0: उड़ बैठी पनवड़ी यादो कन्या आ रे बीड़ा के सब रस ले लिया।

0: मुन्ने देव और साथियों के स्वर में अभी आप शैलेंद्र का लिखा गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संडली।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम विविध संगीत के अंत में अभी आपने सुना जगजीत सिंह के स्वर में राजेंद्र नाथ रावत के लिखे नज्म। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी।

0: बधाई हो सेठ जी, अपने की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

कार्यक्रम सूर्य मंदिर में आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग तबले ताबिर खाने।

सुने थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यमणी। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है, समाचार होंगे।

श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति श्री मोदी ने शांति स्पॉट

0: people of China on behalf of the people of India. In IPL cricket, Punjab Kings defeated Lucknow tonight, chasing a target of 197 runs for 3 in 18 overs. Kings won the toss and opted to bowl. Put into bat, Lucknow Super Giants posted 196 runs for the loss of 6 wickets in. And that is the end of this news bulletin.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। नेट में है हमारा आज का प्रसारण अब संपन्न होता है। 53 मिनट पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें अनुमति दीजिए।